0: जी सुनते हो?
1: जी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

Hello, beautiful people. How are you all doing today? I am doing absolutely fine. This is Ippy the Hippie back in the house. Da-na-na. She's a bad mamma Gemma. That's right. Hey, I'm a baddie, and I think that's okay. And I can say that about myself because I know it. So, guys, thank you for all the amazing calls that have just started pouring my way as soon as I reached. I'm going to try and play all of your requests, okay? And Lekin, before we go any further, how was your Wednesday so far? You know, my Wednesday was so good. Maine pata hai kya kiya aaj? Kuch bhi nahi kiya. Kal raat ko maine jaake late night show mein akele baith ke Spider-Man dekhi, theek hai? Matlab wo to aayi thi, abhi aayi hai movie, to maine socha ki chalo 10 baje khatam hota hai hamara. And then uske baad pahunchte raaste mein Cinemark dikha mujhe. Matlab on the way to my house. मैंने कहा नहीं यार ये तो जाती हूँ मैं सिनेमा के अंदर जाती हूँ. ट्यूसडे भी है, ट्यूसडे को डिस्काउंट पे टिकट्स भी मिलती है. तो मैंने देखा मूवी थिएटर और मैं सीधा चली गई उसके अंदर और मैंने अकेले बैठ के मतलब स्पाइडरमैन देखी जो थोड़ी सी लंबी थी फॉर अ हॉलीवुड फिल्म. इट वॉज अ लिटिल बिट लॉन्ग बट इट वॉज फन आई एन्जॉयड इट. उसके बाद फिर मैं आज लेट उठी और मैंने कुछ नहीं किया. आई हैड नो टीचिंग नथिंग लाइक दैट. फिर मैं सीधा यहीं पे आई हूँ. सो आई हैड अ वेरी रिलैक्स वेंसडे. आई होप यू ऑल्सो हैव हैड अ ब्यूटिफुल रिलैक्स वेंसडे. विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. आई हैव गॉट सम सॉन्ग रिक्वेस्ट कमिंग अप व्हाइल आई क्यू देम. आप ये वाला गाना सुनिए.

All right, this next song goes out to Zimran. Zimran, I hope रात भर आप भी एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ये गाना रात भर फ्रॉम द मूवी हीरोपंती गोज आउट टू यू.

गाइज, आमिर खान तो लड़कियों के सपने देख रहा है, लेकिन अगर आप घर के सपने देख रहे हैं तो लुक नो फर्दर, गो टू ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू अ रियलिटी विद देयर पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस. दैट इज राइट. With a smooth and a stress-free process, they are licensed in all 50 states. तो अगर आप first time homeowner हैं या फिर you are upgrading or refinancing, start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com. That's right, guys. तो आगे बढ़ते हुए, this song is not रमैया वस्तावैया. पहले इन्होंने जब रिक्वेस्ट करी तो मैंने बोला रमैया वस्तावैया, यानी कि रमैया वस्तावैया मैंने तुझे दिल कहते. नहीं नहीं, नॉट दैट रमैया वस्ता. तो मैंने कहा अच्छा, दिस इज द न्यू वन विच इज नॉट टेक्निकली रमैया वस्तावैया. तो लेट अस लिसन टू दिस सॉन्ग. और ये आपके लिए है जिन्होंने भी रिक्वेस्ट करी. मैं आपका नाम लेना भूल जाती हूँ. कई बार क्या होता है ना, जब आप कॉल करते हो मुझे रिक्वेस्ट के लिए, आप ही मुझे पहले अपना नाम बता दिया करो, मैं तो भूल जाती हूँ पूछना.

0: मोहब्बत न हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
1: भाई प्यार की दुनिया में पहला कदम हो या ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, आजकल के ज़माने में, डेटिंग ऐप के ज़माने में पहले कदम किसी के नहीं होते, अनलेस यू आर इन 12th ग्रेड और समथिंग लाइक दैट, और इन हाई स्कूल। प्यार की दुनिया में सब पहले ही कदम रख चुके होते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस। हाउएवर कविता जी, यू आर वन ऑफ आर लिसनर्स एंड दैट इज़ वाई, यू नो वट, I played that song for you. What a great tune. मैंने कभी सुना नहीं था ये गाना actually. और कविता जी ने मुझे ना गा के सुनाया ये वाला गाना। मैंने कहा अच्छा, very nice. I shall play it. और कविता जी की आवाज़ बिल्कुल वो पुरानी वाली जो सिंगर नहीं थी सुरैया, उनके जैसे उन्होंने गाया एकदम उसी स्टाइल में। तो मैंने कहा वाह क्या शानदार प्रदर्शन है। तो इसीलिए मैं, बिकॉज आई एम सो नाइस, लाइक आई एम टोटली इन द ग्लिंडा वाइब्स बाय द वे, इन केस यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसीलिए मैंने आपके लिए वो गाना बजाया, इवन दैट्स नॉट अ मॉडर्न ट्यून, हाउएवर। और ये नेक्स्ट गाना मैं आपके लिए नहीं बजा रही हूँ, ये मैं अपने लिए बजा रही हूँ, बिकॉज यू नो व्हाट गाइस, आई नो आई एम द बेस्ट। थोड़ी अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए, कोई और करे ना करे, खुद की तारीफ करना जरूरी है।

0: भाई किसी को जब इंसल्ट करनी होती है ना, आई हैव यू हर्ड दैट सेइंग कि किसी को अगर इंसल्ट करनी होती है तो उनको हम बोलते हैं कि हाँ, जितना बोलते रहो मे बी वन डे यू विल एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इट. इट्स वेरी नाइस कम बैक फॉर समवन यू नो हु इज लाइक ब्रैगिंग टू मच अबाउट देम सेल्व्स, या फिर व्हाट यू कॉल इट, मतलब आप उनको उनकी प्लेस दिखा रहे हो या जो भी. बट टू बी फेयर, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज वू पीपल लाइक मी, विच आई टोटली एम इन टू मैनिफेस्टेशंस एंड एफर्मेशंस, विच इज़ बाय द वे लाइक प्रूवन साइंटिफिकली नाउ दैट दीज एक्चुअली वर्क, लाइक इवन थेरेपिस्ट यूज दीज टूल्स. अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव री एनफोर्समेंट करते हैं रोज सुबह उठ के एंड बोलते हैं आई एम अ टोटली सिक्योर पर्सन, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, ला ला ला, वी एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इट. दैट इज ट्रू. अगर आप उसका ऑपोजिट बोलेंगे ना, ओ आई डोंट फील गुड इनफ, ओ माई गॉड सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, नहीं आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस, देन यू विल स्टार्ट बिलीविंग दैट. बाय द वे इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कुछ चीज़ें वट एवर यू से आउट इन द यूनिवर्स, मेक श्योर इट्स ऑन अ पॉजिटिव नोट, बिकॉज यू नो द यूनिवर्स इज एन अमेजिंग थिंग, इट वर्क्स ऑन वाइब्रेशन, सो वट एवर यू से आउट इन द वर्ल्ड वो एक्चुअली सच हो जाती है. तो मेक श्योर आप अच्छी बातें बोलिए अपने बारे में, दूसरों के बारे में दैट्स अप टू यू, दैट्स अ चॉइस, बट अपने बारे में तो कम से कम बोलो, क्योंकि आप खुद नहीं बोलोगे अपने बारे में अच्छा तो पड़ोसी थोड़ी ना आके बोलेंगे, मे भी शायद बोल दें, लेकिन अपने बारे में यू हैव टू रियलाइज योर ओन सेल्फ वर्थ एंड योर ओन सेल्फ वैल्यू. तो आगे बढ़ते जाने मन, ये गाने आपके लिए सर.
1: मोबाइल

guys, this is Ippy the Hippie. It is 7:57 on the clock. हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले गाइज आपको पता है ना सैटरडे को क्या हो रहा है. इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सस का आनंद बाजार 2026, which is this Saturday from 2 PM onwards at the Commercial Center in Frisco. Best part, पूरा इंडोर्स है तो आपको गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी. डैलस की धूप में तपती गर्मी में नहीं जाना पड़ेगा. एंड इट इज फ्री फॉर एवरीवन. एंजॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड, अ ग्रैंड परेड एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लाइव म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ शॉपिंग. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सस बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. आनंद बाजार 2026, ब्रॉट टू यू बाय इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सस.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
5: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
5: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
4: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
6: बेटा 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
6: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
11: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
12: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
13: Ocho.
14: Hoko.
13: Ocho.
14: Hoko.
13: Ocho.
14: It's Hoko.
15: अरे बस भी करो यार।
14: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
15: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
16: ये तारा वो तारा हर तारा।
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
17: Hi USA, this is Imran Hashmi.
18: Hi, this is Isha Patni.
17: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
18: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
17: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awar Appan 2 in cinemas from 14th August.

पता है आपको कैसे पता चलता है कि कोई सुन नहीं रहा है? मतलब आपकी टीममेट्स वाले, आप ऑडियंस तो सुन रहे हो लेकिन हमारी टीममेट्स कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप हफ्ते भर हफ्ते आप गड़बड़ गड़बड़ बोले जाओ और एक गलत प्रोनाउंसिएशन करे जाओ और कोई आपको करेक्ट ही नहीं कर रहा है. तो मैं पिछले 2 हफ्तों से ये इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सस के आनंद बाजार के बारे में जो मैं बोल रही थी, आई डेंट इवन रियलाइज. मैं बहरी तो थी पहले, मैं अंधी भी हो गई हूँ, विच इज कि वो कमर्शिया सेंटर नहीं है भाइयों, वो कोमेरिका सेंटर है. थैंक यू टू मार्विन जी जो अभी सुन रहे थे. मार्विन जी, थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग आउट. भाइयों बहनों, अगर आपने डिसाइड करके रखा है ना इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सस के आनंद बाजार में जाएंगे, तो मेक श्योर इट इज अ कोमेरिका सेंटर, नॉट कमर्शिया सेंटर. आई डोंट इवन नो इफ देयर इज अ कमर्शिया सेंटर इन फ्रिस्को, बट डोंट गो देयर, गो टू कोमेरिका सेंटर, दैट्स वेयर इट्स हैपनिंग 2 बजे से. ठीक है, तो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट अस प्ले. आपको पता है ना कितने बजे है? वेल इट इज 8:06 ऑन द क्लॉक एंड दिस इज योर होस्ट एंड योर बेस्टी एपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू माई शो एन इवनिंग इन डैलस ओनली ऑन फनेशिया रेडियो 104.9 FM. तो इट इज दैट टाइम ऑफ द डे जब हम खेलते हैं गेम फॉर आवर गिव अवे गिव अवे गिव अवे. तो गिव अवे है क्या इस हफ्ते का? ठीक है, फ्रॉम फन पिज्जा किचन दे हैव लॉन्च्ड ए ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइन अप. और ये सिर्फ पिज्जा नहीं है, दे आर फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा, फायरी फ्रेश वेजी टू फायरी पोयो लोको सी फूड पैक सीनियर कैमरॉन एंड द लोडेड मूचो माचो पोर्कलिशियस. एग्जैक्टली, एवरीबॉडी इज बोल्ड एक्साइटिंग एंड मेड टू इम्प्रेस. तो डोंट डिले, अगर आपको गिव अवे नहीं भी मिलता है तो गो टू फनेशिया फन पिज्जा किचन एंड ट्राई द न्यू ऑब्सेशन फॉर योर सेल्फ. ठीक है, तो आप क्या जीत सकते हैं गिव अवे? यू कैन विन ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आई विल टेल यू व्हाट द क्वेश्चन इज. नॉर्मली वी हैव टू गिव अवेज, राइट? टू टाइप्स ऑफ गिव अवे क्वेश्चन. वन इज की साउंड्स लाइक वाला गेम एंड दूसरा होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको कंप्लीट द डायलॉग. अच्छा, गेम इज गोइंग टू बी द साउंड्स लाइक वन बिकॉज हम लोग कंप्लीट द डायलॉग कल खेल चुके हैं, तो आज हम खेलेंगे साउंड्स लाइक. लेकिन देर इज अ लिटल ट्विस्ट टू दिस. ओके, द ट्विस्ट इज कि इंस्टेड ऑफ यू गाइज टेलिंग मी द बॉलीवुड सॉन्ग जो कि कॉपी है फ्रॉम दिस इंटरनेशनल ट्यून, you have to tell me the opposite. You have to tell me the name of the Bollywood song which is actually the original. Okay? इस वाले केस में थोड़ा उल्टा हो गया. You're still telling me the Bollywood tune. तो वो तो सही है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताती हूँ. So let me explain it. Basically, there is a tune, really, really popular Bollywood tune. उसका ना sample उठाया गया है और उसको चेंज करके ना बहुत ही पॉपुलर एक ट्रैक बनाया गया है. यू नो द दिस ट्रैक, इट्स बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉप स्टार्स ऑफ ऑल टाइम्स एंड वंस आई प्ले द ट्रैक आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हियर इट. अगर आपको नहीं पता चलता देन आई विल ऑल्सो गिव यू अ लिटल हिंट. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स प्ले. यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड ट्रैक, रिमेंबर, जिससे ये सैम्पल उठाया गया है. तो लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक.

0: No? चलो, I'll give you a little hint. ये 80s की मूवी थी और 80s की मूवी में it features रति अग्निहोत्री एंड कमल हसन और उसका बड़ा पॉपुलर वाला गाना था, वो बीच पे वो सी वेव्स आ रही है उसके बैकग्राउंड में था. अभी तो फिगर आउट कर लिया होगा. तो जो म्यूजिक है वो शुरू वाला जो म्यूजिक है, जो वायलेंस नहीं आ रही वो वाला म्यूजिक है. दोबारा सुनो. Guys, my number is 972-235-5555. No? लगता है मैंने ज्यादा मुश्किल गाना दे दिया भाई. किसी की कॉल्स ही नहीं आ रही है, नहीं तो अभी तक तो 5-6 कॉल्स आ जाती. कोई बात नहीं गाइज, हम थोड़ी देर बाद आके दोबारा खेलेंगे. तब तक आप गूगल कर लो कि ये कौन से गाने हैं. जो मूवी का नाम भी मैं बता देती हूँ. चलो, मूवी का नाम है एक दूजे के लिए. ठीक है, उसका जो मेन गाना है. आ गया हमारे पास कॉल. देयर वी गो गाइस, इतनी हिंट तो मतलब. चलो,
1: तेरे मेरे बीच में ही है.
0: हेलो हेलो,
1: इज इट तेरे मेरे बीच में?
0: दैट इज द करेक्ट आंसर. इट इज तेरे मेरे बीच में. पहले तो अपना नाम बताइए.
1: मेनका.
0: सॉरी,
1: मेनका.
0: रेणुका.
1: मेनका.
0: मेनका. मेनका जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द गिव अवे. थोड़ा मुश्किल था.
1: फैमिलियर, बट इट वाज टेकिंग मी अ लिटिल टाइम टू प्लेस इट.
0: या आई नो इट्स अ लिटिल अनपॉपुलर ये वाला गाना है ना. उतना ज्यादा पॉपुलर है तो वैसे बड़ा पॉपुलर, लेकिन लोगों को म्यूजिक का ध्यान नहीं होता. दे मोस्टली थिंक अबाउट द लिरिक्स एंड ऑल दैट. बट टोटली दैट वाज सच अ गुड रिस्पांस. तो मेनका जी, स्टे ऑन द लाइन. आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई टेक योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अगर कॉल कट जाती है जस्ट कॉल मी बैक इन लाइक 5 मिनट्स और समथिंग. ओके, तो गाइज आप सुनते रहिए ये वाला गाना. थिंक अबाउट दिस कि मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी अब दे देती हूँ, क्योंकि ये गिव अवे क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था. और कहाँ से म्यूजिक उठाया गया ये भी मैं बता देती हूँ आपको. ये लो, ये वाला सुनो. तो हियर वी गो, दिस इज वेयर द म्यूजिक एक्चुअली मेक्स सेंस. डू यू हियर दैट? वही सेम सैंपल को उन लोगों ने स्पीड अप करके ना ये ब्रिटनी स्पीयर्स के टॉक्सिक वाले गाने में डाल दिया था. इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट प्रोड्यूसर्स यूज नाउडेज, बट दे डोंट एक्चुअली क्रेडिट द ओरिजिनल आर्टिस्ट. सो कोई बात नहीं, होपफुली समबडी विल कैच इट. तो लिसन टू दिस सॉन्ग, वी विल बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट वाइल.

गाइस अभी पता है मेरे फेसबुक फीड पे क्या आया है अबाउट सम वुमन. ओके सम इंडियन वुमन 24 ईयर वुमन हैज गॉन वायरल आफ्टर शेयरिंग दैट उन्होंने 45 लाख का लोन लिया फ्रॉम इंडिया टू स्टडी अब्रॉड. ठीक है एंड टू परस्यू अ मास्टर्स इन फाइनेंस और उसके बाद कोर्स खत्म करके शी लैंडेड अ जॉब एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट इन मैनहट्टन ऑल बिफोर लाइक रियली फास्ट विद इन लाइक टू ईयर्स. And then she claims that job मिलने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर apparently she repaid the entire 45 लाख का loan. And her journey didn't stop at becoming debt free. She says she travels solo to 10 countries using her own earnings and now spending all of her early 20s studying and working and traveling abroad. She plans to return to India at 24. But you know, here's the catch with the entire thing. She is 24. ठीक है और वो कह रही है टू परस्यू अ मास्टर्स इन फाइनेंस एंड देन शी कंप्लीटेड दैट फाइनेंस एट 21. ठीक है शी कंप्लीटेड दैट डिग्री एट 21 एंड बाय 22 शी लैंडेड द जॉब और वो फाइनेंशियली फ्री हो गई और अभी वो 24 साल की है. तो पता नहीं मुझे ये थोड़ा सा ना फेक स्टोरी लग रही है हाउ क्योंकि यू नो वी ऑल बिन इन सिचुएशंस लाइक दैट. आई एम श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. 6 महीने में पूरा लोन चुकता करना तो मतलब बहुत ही सही बात है. अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं किया है तो मुझे तो लगता है ये तो गोली दे रही है बड़ी लंबी एवी वाली गोली दे रही है. तो गाइज अगर आपको भी ऐसी टैक्सेस और फाइनेंसेस रिलेटेड कोई सिचुएशंस है देन डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज एजी फिनटैक्स इज राइट देयर. अगर आप लोन वगैरह चुकता करने की कोशिश करें एंड उसके चक्कर में आपके बड़े सारे हजारों डॉलर्स के टैक्स बिल भी आ रहा है देन यू नो व्हाट डोंट ट्राई टू हैंडल इट ऑन योर ओन. कॉल एजी फिनटैक्स है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन अमेरिका. तो अगर आप इंडिविजुअल हैं स्टार्टअप है इस्टेब्लिश बिजनेस है दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस बिल्कुल आपकी नीड्स के टेलर जैसे और मे बी शायद आपके टैक्स का बिल भी बच जाए ताकि आप अपना भी लोन जल्दी जल्दी चुकता कर दे. चाहे आपको बुक कीपिंग की जरूरत है पेरोल अकाउंटिंग बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकनसिलिएशन प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग टैक्स कंप्लायंस वगैरह वगैरह बहुत कुछ अगर आपको 9429888 और विजिट agfintax.com today. Okay, bhai, we'll come back after this really nice song and then we'll talk a little bit more.

0: भाइयों और बहनों और साथियों और सहेलियों, हम थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर ये बता दूं आप लोगों को कि आवारापन 2 रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड लवर्स गेट रेडी, द वेट इज़ ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि आवारापन 2 इज़ ब्रिंगिंग बैक इंटेंसिटी, इमोशन एंड एक्शन दैट मेड एन ओरिजिनल कल्ट क्लासिक। इमरान हाशमी रिटर्न्स एज शिवम इन द स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन, लव एंड सैक्रिफाइस, जॉइंड बाय दिशा पटानी एंड द लेजेंडरी शबाना आजमी, पैक्ड विद ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस एंड पावरफुल परफॉर्मेंसेस एंड अ सोल स्टरिंग साउंड ट्रैक। आवारापन 2 इज ऑलरेडी क्रिएटिंग अ मैसिव बज़ पूरे एक साल पहले, स्पेशली आफ्टर इट्स ट्रेलर लॉन्च। और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो हर हफ्ते एक नया गाना रिलीज करते हैं, एक साल पहले से उनकी प्रमोशन शुरू हो गई है। गाइज, स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया फॉर ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स एंड डोंट मिस आवारापन 2 रिलीजिंग ऑन 14 जून अगले साल एट अ थिएटर नियर यू। एग्जैक्टली गाइज, तो ये भी फॉलो करिए और यूट्यूब पे भी आवारापन 2 या कोई भी आपका जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे आवारापन 2 के ना गाने एक एक करके आ रहे हैं हर हफ्ते, तो मेक श्योर यू डू चेक देम आउट। हम अभी जाने वाले हैं 10 सेकेंड्स में एक छोटे से ब्रेक में, बट डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ आई विल बी राइट हियर। सी यू इन अ लिटिल बिट।
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
6: Calculating route, rerouting.
5: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
6: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
5: क्यों?
6: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
5: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
8: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
7: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
8: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
7: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
8: इंडिया तक।
7: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
5: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
5: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
1: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
1: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
4: Hello. Yaad hai na, Comerica Center, not Commercial Center. Okay. So guys, 8:30 baj chuke hain. Aapko pata hai na 8:30 baje kya hota hai. Yes, we do a little chit-chat. By the way, chit-chat se yaad aaya. Maine abhi pata hai mere feed mein kya aaya. Mere feed, aapko pata hai who the rock is? I mean, we all know who the rock is. Can you smell what the rock is cooking? Yes, all my millennial janta. And not millennial janta also know who the rock is, hai na? I mean, I don't think it's anything new. Lekin mujhe bhi pata chala ki the rock has just launched his singing career by writing a song for his little baby daughter. And he's dedicated the song to her, which is kind of sweet. But also, like, why? Pehle tum wrestler bano, phir actor bano. फिर उसके बाद सिंगर भी बन जाओ मतलब यार हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो आजकल तो हर कोई सिंगर ही बन रहा है मतलब किसी को भी मैं देखती हूँ सब अपना बैंड खोल के शुरू हो जाता है गाना गाने भाई हम लोग जो इतनी मेहनत करके जो 20-20 साल तक गाना सीख के हम करें हमारे लिए भी कुछ छोड़ दिया करो यार जिसको देखे वही सिंगर बन जाता है ऐसा थोड़ी ना होता है हर कोई सिंगर बन गया होता तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती सब सुरीले होते कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं सब गा रहे होते झगड़ा तुमने मुझे छोड़ दिया नहीं ला ला ला ऐसे करके सब लड़ाई में भी सुर होता सोचो आप है ना चलो लेट्स लिसन टू दिस वन सॉन्ग एंड देन वी विल कम बैक एंड देन टुडे आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट यू नो लाइक आई सेड मैंने आपको जैसे बोला था ना आज मेरा डे ऑफ था मैंने अपने डे ऑफ में पता क्या किया आई कॉट अप ऑन सम ओल्ड मूवीज मुझे याद आया कि कुछ महीनों पहले हम लोग कॉकटेल 2 की प्रमोशन कर रहे थे कॉकटेल 2 की प्रमोशन करते करते मुझे ये याद आया यार मैंने तो कॉकटेल 1 भी नहीं देखी तो मैंने सोचा आज उसको कैचअप करते हैं तो मैंने आज मेरा छुट्टी था तो मैंने एक्चुअली कॉकटेल 1 देखी कॉकटेल 1 देखते देखते ना नाउ दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट ऑल दीज लाइक रिलेशनशिप पैटर्न्स वगैरह वगैरह सो आई स्टार्टेड लाइक साइको एनालाइजिंग द एंटायर मूवी इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट इट स्ट्रेट अवे फ्रॉम लाइक a love triangle perspective I started analyzing like psychoanalyzing each of those characters and their traits so come back after the song because I'm going to tell you what my thoughts on this are I'm not going to call it a finding because it is not a research finding and I don't have scientific data but it's just my opinion so stick around

आज कॉकटेल देखते देखते ना मुझे ये याद आ रहा है, देख, क्योंकि आई केम अक्रॉस दिस वन वीडियो विच एक्चुअली मेड मी थिंक अ लिटल बिट. वो ये था कि अपॉलोजीज, ठीक है, कई लोग आपको सॉरी बोलते हैं और आप उनको यू नो यू फॉरगिव देम और आप सोचते हो कि ठीक है कोई बात नहीं यार, सॉरी बोल दिया दोबारा नहीं करेंगे या जो भी है. इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी एनी वन ऑनेस्टली. लेकिन समटाइम्स अपॉलोजीज आर जस्ट नॉट इनफ, बिकॉज अपॉलोजीज डोंट एक्चुअली इरेज द पैटर्न. और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सेइंग है क्योंकि आपको याद है अगर कॉकटेल वन में जैसे मीरा थी एंड देन व्हाट वाज दैट गाइज नेम, सैफ अली खान के कैरेक्टर का नाम क्या था, कोई बात नहीं जो भी है, गौतम, गौतम एग्जैक्टली. तो गौतम मतलब उसका पैटर्न क्या है, उसको रिलेशनशिप कभी बनानी नहीं थी, ही वॉज नेवर सीरियस अबाउट इट, ही वॉज नेवर सीरियस अबाउट द फर्स्ट गर्ल, बट समहाउ ही मीट्स द सेकेंड गर्ल और उनके बीच में इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि ही डिसाइडेड कि नहीं आई एम तो टोटली इन लव विद दिस गर्ल, आई एम अ चेंज्ड मैन वगैरह वगैरह. लेकिन उसने सॉरी नहीं बोला किसी को, मतलब पहले वाली बंदी के साथ भी यू नो वरोनिका के साथ ही वॉज जस्ट काइंड ऑफ फूलिंग अराउंड एंड देन मीरा आई सडनली ही इज लाइक मैं तो प्यार में पड़ गया. एंड उसको देखते देखते ना मुझे ये लगा कि यू नो द वे ही इज डिस्क्राइबिंग हिज सो कॉल्ड लव और दिस केमिस्ट्री दैट ही सडनली हैव्स, लाइक मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं हमेशा उसके बारे में सोच रहा था, ओ माई गॉड, बॉर्डर लाइन ऑब्सेशन. दैट काइंड ऑफ मेड मी थिंक कि भैया तुम अपनी एंग्जायटी पैटर्न्स को प्यार में तो नहीं समझ रहे हो. हम लोग कई बार क्या होता है ना, हमारी जो अपनी एंग्जायटी पैटर्न्स होती है वी डोंट रियलाइज कि दे माइट बी आर नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्डिंग बिकॉज मे बी दैट फीलिंग इज काइंड ऑफ न्यू. उसको पहले वाले प्यार कभी नहीं हुआ है तो ये नई वाली फीलिंग आई है उसको, सडनली एक लड़की से ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया. और लेकिन उसका तो पैटर्न है यार, वो एक लड़की को छोड़ता है दूसरी लड़की को पकड़ता है, उसका तो पैटर्न है. पैटर्न वाले जब तक अपनी गलती नहीं मानते हैं, जब तक अपने पैटर्न को नहीं बदलते हैं, वो बंदा नहीं बदलेगा. सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं चलेगा ब्रो. तो थोड़ी देर और बात करेंगे, आई टेल यू व्हाट आई थिंक, लेकिन पहले ये गाना.

तो गाइस हम जैसे बात कर रहे थे गौतम के बारे में, गौतम वन ऑफ आवर मेन कैरेक्टर्स, ठीक है। आई मीन उसको तो शक्ल देखकर ही लगता है कि वो चलता फिरता रेड फ्लैग है। पता नहीं उसके कैरेक्टर को हमने इतना ग्लोरीफाई कैसे कर दिया। ओहो, ही हैज चेंज्ड बाय द एंड ऑफ द मूवी। लेकिन गाइस थिंक अबाउट दिस, क्या उसका कैरेक्टर ना इतना फैसिनेटिंग है। थिंक अबाउट दिस, ही इज चार्मिंग, ही इज फनी, टिपिकल अल्फा मेल, ही इज कॉन्फिडेंट, फ्लर्टेशियस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ कोर्स, एंड देन ही हैज दिस लाइक वंडरफुल लिटिल फिलोसफी कि डोंट टेक रिलेशनशिप्स टू सीरियसली। तो क्लासिक अवॉइडेंट अटैचमेंट, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको मस्ती करनी है। ही वॉन्ट्स टू हैव फन, ही वॉन्ट्स टू फूल अराउंड विद पीपल, नो स्ट्रिंग्स अटैच, नो एक्सपेक्टेशंस, नो कॉम्प्लिकेशंस, नो ड्रामा, ओके। एंड एवरीथिंग लाइक ऑल ऑफ दैट साउंड्स फैंटास्टिक टू हिम, ठीक है। अंटिल समबडी, किसी की फीलिंग्स आ गई, भाई किसी की फीलिंग्स आ गई तब तो सीधा उसको डंप कर दो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। इट वर्क्स ब्यूटिफुली अंटिल समबडी गेट्स अटैच, देन उसके बाद क्या होता है, देन ही गोज विद द आइडिया कि नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि दिस इज कैजुअल, तुम फीलिंग्स में आ गई ऐसे ऐसे करके, आई डोंट नो दिस। तो जब यू नो टिपिकल अवॉइडेंट अटैचमेंट, पता है क्या होता है, जब आप एक अवॉइडेंट को चेज करते हो वो उतना ही दूर आपसे पीछे पीछे पीछे पीछे भागता रहता है, लेकिन द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग घास टू द अवॉइडेंट ना, वो आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो हम बोलते हैं ये सारे लड़के ऐसे ही करते हैं, लेकिन गाइज इट इज ऑल्सो सेड दैट मोस्ट ऑफ द अवॉइडेंट अटैचमेंट, द सो कॉल्ड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल इज मोस्टली मेन, एंड वुमेन हैव द एंक्शियस अटैचमेंट बिकॉज दे आर लाइक, क्योंकि हमारे ना दिमाग में डाल के रखते हैं वो बचपन से कि अरे एक सफ़ेद घोड़े पे दिस प्रिंस इज गोइंग टू कम एंड चूज यू एंड बी योर सेवियर एंड

avoidant attachment style is mostly men, and women have the anxious attachment because they are like, क्योंकि हमारे ना दिमाग में डाल के रखते हैं वो बचपन से कि अरे एक सफ़ेद घोड़े पे दिस प्रिंस इज गोइंग टू कम एंड चूज यू एंड बी योर सेवियर एंड वगैरह वगैरह ऐसे करके. तो अवॉइडेंट अटैचमेंट एंड एंक्शियस अटैचमेंट वैसे ही आ जाती है थोड़ी सी, बचपन से ही हमारे दिमाग में उसको ट्रेन करते हैं. सो एनी वेज, गोइंग बैक टू गौतम, तो वी सी दैट ही हैज़ लाइक दिस अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न. एंड मैनी पीपल डू दिस इन रियल लाइफ ऑल्सो. दे से अरे मैंने तो तुम्हें बताया था आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस. आई टोल्ड यू आई वॉज लाइक आई एम अ नॉनशैलेंट गाय एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट, एज इफ सेइंग दैट गिव्स देम द परमानेंट इम्यूनिटी फ्रॉम इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है. बट देर इज दिस अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन, वॉट इफ आपकी जो बिहेवियर है, आप इतने क्लोज हो जाते हो एक पर्सन से, इट क्रिएट्स एन इंटिमेसी जो आप यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, लेकिन आप अपनी तरह से पूरी चीज़ कर रहे हो. ओके, दे फॉल इन लव विथ योर बिहेवियर, द कॉन्वर्सेशंस, लेट नाइट, इमोशनल इंटिमेसी, फिजिकल इंटिमेसी, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, लेकिन वो सब कहते हैं कि नहीं आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, एंड देन वन डे दे विल टर्न अराउंड एंड से हे बट आई नेवर प्रॉमिस्ड यू एनीथिंग. मे बी नॉट, बट आपने पूरी मेहनत डाली है टू क्रिएट समथिंग एंड गिव द इल्यूजन दैट समवेयर समथिंग इज गोइंग, एंड दैट इज वेयर गौतम्स पैटर्न कम्स इन. This avoidant attachment pattern. He wants the freedom of casual relationships, लेकिन उसको committed relationship वाली सारी हरकतें करनी है. ऐसे थोड़ी ना होता है life में. तो guys, ये गाना सुनते हैं. इस गाने सुनने के बाद we will talk more about the other characters. So stick around.

तो गाइस गौतम की जब बात करें ना, लेट्स थिंक अबाउट, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लिसन टू दिस. एक्चुअली डोंट लुक, यू कांट रियली लुक. आई मीन आई विश यू कुड लुक. आई थिंक सम पीपल कैन लुक ऑल्सो, बट दैट्स नॉट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. लिसन टू दिस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो थिंक अबाउट दिस इन योर ओन लाइफ, यू नो वॉट, वट एवर गौतम का जो कैरेक्टर है, थिंक अबाउट इट फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव. ओके, he says, I never meant to lead you on, and I'm sure girlfriends, you've all heard this, especially guys, they will turn around and say, I never meant to lead you on, we were just having fun. But you know what, you did. Matlab, all the things people say and everything, not necessarily, maybe not intentionally, but repeatedly, agar aap kisi ko mislead kare ja rahe ho, toh it's a little confusing. And that's a distinction, pata hai. Intent doesn't erase the impact. Even if you did not intend, the impact is still felt. An apology does not erase your patterns that you have not yet realized. The other person has realized. Agar aap Meera ko dekhoge, jo jaise Gautam goes to Meera and like confesses, you know, his love, Meera seedha seedha uske muh pe bol deti hai, bro, tere to ye pattern hai, tu kisi bhi ladki ke peeche jata hai, फिर तुम्हारा ये पैटर्न है, फिर तुम बोर हो जाते हो, तुम चिढ़ जाते हो. मीरा एक्चुअली सॉ दैट पैटर्न एंड शी एक्चुअली रिफ्यूज्ड गौतम द होल टाइम. ओके, अंटिल ही डिस्कवर्स दैट हिज बिहेवियर एक्चुअली हैज कॉन्सिक्वेंसेज. यू कैन नॉट कॉन्स्टेंटली टेल पीपल एंड गेट अवे विद द थिंग कि भाई मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, या मैं ऐसी ही हूँ, या जो भी है. आप वैसे नहीं बोल सकते हो किसी को. यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी for your actions, and that is very, very important. And uske baad, if you're inconsistent, people experience inconsistency. If you're emotionally available, unavailable, then that's exactly what they see. If you keep close enough to comfort you, but far enough that you don't have to be accountable, you can't, like, what do you call that saying? You can't have your own cake and eat it too, right? You know what I'm talking about? एंड उसके बाद जब आप सॉरी बोलते हो, कोट अनकोट सॉरी बोलते हो, इज इट बिकॉज यू हर्ट समवन, और आर यू एक्चुअली विलिंग टू चेंज एंड ब्रेक योर पैटर्न्स? नाउ दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज टू थिंक अबाउट एंड आंसर. मे बी वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स इन आर ओन लाइव्स, एंड द बेस्ट अवेयरनेस इज टू फिगर आउट वॉट योर पैटर्न इज, मतलब आपके अंदर की जो क्या पैटर्न है वो. अब ये गाना सुनिए एंड देन वी विल बी राइट बैक.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
9: भूख लगी
10: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
12: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
13: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
13: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
14: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
15: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit Call Duct Time. Breathe easy, live safe with Duck Time.
16: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
17: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
18: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू गेम.
19: भाइयों और बहनों, सहेली और साथियों, यस दिस इज इपी द हिप्पी
9: back for my last hour today on Fun Asia Radio 104.9 FM. And you are listening to my show, An Evening in Dallas. Thank you so much for the absolutely wonderful calls. Aapko jo mera segment ye pasand aa raha hai on relationships and all the discussion and patterns and vagaira vagaira, self-awareness. मुझे बड़ा अच्छा लगता है when you call me and tell me. अभी आंटी जी ने जिन्होंने मुझे कॉल किया उन्होंने मेरे को बोला कि भैया मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम जब आके बोलती हो आपको थेरेपिस्ट बन जाना चाहिए. भाई आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बी अ थेरेपिस्ट तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी थेरेपिस्ट तो नहीं बन सकती बट आपने मेरे दिमाग में ख्याल ज़रूर डाल दिया है तो मे बी आई विल कंसिडर इट एंड गेट द प्रॉपर क्वालिफिकेशन मे बी दैट विल बी द फोर्थ कॉलेज डिग्री दैट आई विल अर्न. आई मीन एंड मेरे ना एक घर में ना एक दीवार है जिसमें मैंने अपनी सारी डिग्रीज चिपका के रखी हुई है और मैं उसको देख के खुद ही खुश होती हूँ एंड देन आई जस्ट यू नो बैस्क इन माई ओन ग्लोरी. इट्स ओके समटाइम्स यू नीड टू डू इट. कोई नहीं आने वाला आपको बोलने के लिए तो आप अपने लिए अपनी तारीफ खुद ही करो. ठीक है तो मेरी तारीफ छोड़ो भाई श्री कृष्णा की तारीफ करते हैं. पता है क्यों? क्योंकि ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी. इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी. भैया आपके लवर्स और पार्टनर्स और पति परमेश्वर या जो भी आपकी फैमिली में है भाइयों भाई भी हैं उनको भी आपकी तारीफ करने का कोई मौका देना चाहिए ना. तो इसीलिए उनको बोलो इस राखी पे या जो भी ओकेजन आ रहा है एनिवर्सरी है जो भी है श्री कृष्णा जाए क्योंकि उनके पास है गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग डायमंड्स इंट्रिकेट कुंदन एंड स्टनिंग पोल की कलेक्शन. एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स. नाउ दे हैव अ न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को. ठीक है श्री कृष्णा ज्वेलर्स क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश मेमोरीज सिंस 1967. तो गाइज आप ये गाना सुनिए एंड देन आफ्टर द सॉन्ग वी विल कम बैक and we will continue to psychoanalyze Meera and Veronica this time. ठीक है हो गई हमारी उसकी बात गौतम की बात हो गई अभी हम लड़कियों पे आते हैं. ओके लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड कम बैक एंड देन टॉक अबाउट इट.

गाइस, दिल के साथ साथ ना अपने फिजिकल बॉडी की भी ध्यान रखनी चाहिए. तो इसीलिए अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है एंड यू नीड टू कंसल्ट अ फिजिशियन और फॉर एनीथिंग, देन यू नीड टू रीच आउट टू पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, क्योंकि वो लोग आपके साथ पूरे 30 मिनट की अपॉइंटमेंट स्पेंड करेंगे. ओके, नॉट जस्ट 5-10 मिनट, पूरे 30 मिनट. ओके, दे आर फॉर यू एंड योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी. चाहे आप एंग्जाइटी केयर से डील कर रहे हैं, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड मेनी मोर, दे आर ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे एट 214-666-6259. तो गाइज, आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर रहे थे वरोनिका की. ठीक है, वरोनिका हु वॉज प्लेड बाई दीपिका पाडुकोन. सो इफ यू लुक एट हर, लाइक यू नो, वी सेड दैट शी इज अ क्लासिक केस ऑफ एंग्शियस अटैचमेंट एंड चाइल्डहुड अबैंडनमेंट इशूज, विच एक्चुअली टोटली प्लेज अ रोल इन टू हर करंट सिचुएशन. वो हर बार ये कोशिश करती है, शी ट्राइज टू प्रिटेंड टू बी लाइक दिस लाइक रियली कूल गर्ल, लाइक ओ आई डोंट केयर, आई डोंट नीड एनीवन, आई एम सो इंडिपेंडेंट, आई लव टू पार्टी वगैरह वगैरह. शी इज ट्राइंग टू हाइड हर वूंड्स इन पार्टी एंड नॉट फेस देम. ओके, एंड देन इवन व्हेन शी गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप, शी इज लाइक आई डोंट नीड दिस अटैचमेंट वगैरह वगैरह, आई एम सो कूल दिस गर्ल, आई कैन टोटली गेट इनटू अ कैजुअल रिलेशनशिप, आई कैन लिव विद दिस गाय एंड बी इन अ casual relationship with him, which is no, that's not how casual quote unquote relationships actually work. You can't be living with that person and say that, oh, this is a situationship. No, at that point of time you are like committed, you're living together, it's a whole different thing, right? So she says she can handle all this, but the moment Gautam says ki nahi, I'm gonna go to Meera, I love Meera, at first she's like, oh cool, yeah, I'm a cool girl, I can handle this, sure, I don't want to be that burden beech mein. Lekin baad mein uski dheere dheere jo unhealed traumas jo hoti hai na, dheere dheere wo bahar aani shuru hoti hai, nahi tum mujhe chhod ke nahi ja sakte, I can't live without you, all those abandonment issues that she has, they start resurfacing. She gets heavily into partying, does all kinds of intoxication, you know, goes with other guys that she doesn't want to confront. Gautam and Meera are looking at her like, I thought you were cool with us, what are you doing? She's like, hey, I'm totally fine, don't come close to me, okay? She is basically the classic case of someone who does not want to experience vulnerability, because obviously agar aapko koi reject karta hai and somebody chooses someone else over you, that is a really vulnerable situation, that is a clear cut case of rejection, right? But instead of emotionally and instead of, you know, being what do you call this, instead of being emotionally managing your emotions well, instead of managing your emotions properly and apne aap ko sambhal, apne dil ko sambhalna, you are getting into these other situations so you don't have to face that kind of a vulnerability, right? And then, you know, uske baad wo, she tries all her ways ki, you know, she, the further Gautam goes away from her, the tighter she tries to latch on to him. Jitna wo dur ja raha hai, wo usi se utna paas mein aa rahi hai. Uske baad uska accident bhi ho jata hai, to ab Gautam usko chhod ke ja bhi nahi paata. And then, you know, she's like, oh no, I will change. I will completely morph myself into this guy, into this guy's image of what his ideal relationship should look like. तो उसके बनाने शुरू हो जाती है लैम बिरयानी. जिसने कभी खाना नहीं बनाया जिंदगी में, उसके लिए लैम बिरयानी बना रही है, रायता बना रही है, उसको रायते का वर्ड भी नहीं मालूम, वो रायता बना रही है, और फिर योगा कर रही है, मंदिर बना दिया उसने अपने घर में. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो विच इज़ टोटली अनलाइक वरोनिका, एंड दोज आर द थिंग्स दैट मीरा डज. सो शी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग हर सेल्फ टू दिस इमेज दैट शी थिंक्स दैट ओ इफ आई बिकम दिस पर्सन then maybe Gautam is going to choose me this time, you know. Chaos starts feeling like chemistry, okay? And that's what Veronica's character is, okay? Because peace can feel boring when your nervous system has become addicted to uncertainty, right? Sometimes we don't understand what is the difference between peace and boring, because hume lagta hai peace is boring, lekin peace is not boring, guys. Peace सबको नहीं मिलता है, सबको लगता है फायरवर्क्स इज केमिस्ट्री, बट फायरवर्क्स इज मे बी समटाइम्स योर नर्वस सिस्टम टेलिंग यू कि भैया दिस इज एंग्जायटी, अनफेमिलियर,
आगे बढ़ते हुए गाइस ये गाना सुनिए, दिस सॉन्ग गोज आउट टू अजान. अजान रिक्वेस्टेड नाखून बाय सज्जत अली. आई डोंट नो द सॉन्ग बट आई शैल प्ले इट फॉर यू.

0: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा।
6: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khan Zada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jabu Times available hai ek click par, thejabutimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khan Zada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
10: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
11: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
10: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
12: हाँ जी भाई, कोमेरिका सेंटर, दोबारा बोल रही हूँ, कमर्शिया सेंटर नहीं, कोमेरिका सेंटर। तो अगेन, तो इनके हिसाब ने अपने डायरी में या कहीं पे अपने रिमाइंडर्स में लिख दिया कि नहीं, हम इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास के कमर्शिया सेंटर वाले इवेंट पे जाएंगे सैटरडे को। भाई कोमेरिका सेंटर दोबारा चेक कर लेना, ठीक है। तो गाइस, पता है इस महीने और क्या होने वाला है? इस महीने और होने वाला है, बिसाइड्स इंडिपेंडेंस डे, देयर इज गोइंग टू बी राखी, और एंड ऑफ द मंथ मेरा जन्मदिन भी आ रहा है। तो इसीलिए अगर आपको अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ गहने शहने खरीदने हैं, यू नो, राखी के शुभ अवसर पर, या फिर इफ़ यू आर टू एक्स्ट्रा जेनरस एंड यू वॉन्ट टू बाय मी ऑल्सो अ प्रेजेंट, आई एम किडिंग, then you need to head down to Tanishq, because diamonds aren't just forever. They are even more irresistible during the Tanishq Festival of Diamonds. Enjoy up to 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction at the exchange of old gold above 18 carats. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. Please visit Tanishq in Frisco. ठीक है? तो मैंने पहले ही बोल दिया, बाद में मत पूछना कि भाई हमें तो ये पता ही नहीं था इसके बारे में. हाँ, तो आगे बढ़ते हुए गाइज, वी वर गोइंग टू एनालाइज द कैरेक्टर्स. तो मैंने वरोनिका के बारे में बोल दिया, गौतम के बारे में बोल दिया, देन वील कम बैक टू मीरा. लेकिन अभी तो टाइम है, इट्स ओनली 9:35, वी हैव अ होल 25 मिनट्स टू डू मीरा का साइको एनालिसिस. लेकिन उसके पहले आप ये गाना सुनिए.

गाइस आते हैं मीरा की बात करते हुए. तो मीरा का जो कैरेक्टर था ना, पहले ग्लांस में आपको लगेगा ओह शी इज टोटली सॉर्टेड, शी इज लाइक द क्वाइट वन, द गुड गर्ल, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वो तो मतलब शी इज़ अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस. वो क्या हुई, वो इंडिया से आई सीधा दिल्ली से आके लंदन पहुंची सलवार कमीज में, एकदम यू नो सीधी सादी लड़की एंड ऑल दैट. देन यहाँ आके पता चला उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, उसके हस्बैंड ने ऐसी झूठ मूठ की शादी करी, एंड देन शी इज़ लेफ्ट आउट ऑन द स्ट्रीट्स. शी इज़ द टिपिकल क्वाइट वन, रिजर्व वन, द ट्रैड वाइफ, यू नो दैट काइंड, द स्वीट वन, द गुड गर्ल इमेज. एट फर्स्ट ग्लैंस शी सीम्स की नहीं यार, शी इज़ इमोशनली, शी इज मच मोर हेल्थियर ऑल्टरनेटिव इन कंपेरिजन टू गौतम जो अवॉइडेंट है, एंक्शस अटैचमेंट जो मीरा है, एंड देन यू नो शी सीम्स लाइक ओके शी इज जस्ट अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस. लेकिन उसके बाद मीरा के भी अपने पैटर्न है. पता है क्या उसके पैटर्न है? सेल्फ सप्रेशन. वो अपने ख्वाहिशें को या अपने जो उसके जो डिज़ायर्स है या अपनी जो उसकी वॉइस है उसको हर बार वो दबाए जाती है, दबाए जाती है. उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, एंड इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अ केस और एनीथिंग ऑन हिम, शी कुड हैव सूड हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई मीन इफ दे वर लीगली मैरिड शी कुड हैव सीक द हेल्प ऑफ पुलिस. लेकिन उसको छोड़ दिया अपने हस्बैंड को, उसने बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आई विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ माई न्यू बेस्टी ओवर हियर कॉल वरोनिका, जिसने मुझे शेल्टर किया. ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे यू नो शी मीट्स, ऑफ कोर्स शी इज़ हैंगिंग आउट विद गौतम, एंड देन दे बोथ फॉल इन लव. लेकिन शी रियलाइजेज नहीं नहीं गौतम एंड वेरोनिका आर इन अ रिलेशनशिप, सो आई शुड स्टेप बैक इवन दो आई रियली लाइक गौतम, विच इन अ वे इज़ एक्चुअली अ हेल्थी ट्रेट, बिकॉज ऑब्वियसली यू शुड नॉट इंटरफियर इन समवन एल्सेस रिलेशनशिप, स्पेशली इफ यू नो दे काइंड ऑफ हैव देयर ओन थिंग फिगर्ड आउट. आपको बीच में मतलब यू डोंट हैव टू थर्ड व्हील दैट, राइट? एंड शी डजन वॉन्ट हर्ट हर बेस्टी वेरोनिका, क्योंकि उसने उसको बहुत हेल्प करी है. शी डजन वॉन्ट कॉन्फ्लिक्ट, शी डजन वॉन्ट टू डिसअपॉइंट एनी वन, शी इज़ द परफेक्ट गर्ल. शी डजन वॉन्ट टू एडमिट दैट शी ऑल्सो वॉन्ट्स गौतम, बट शी जस्ट कीप स्वॉलोइंग द ट्रूथ, स्वॉलोइंग द ट्रूथ. देन उसके बाद क्या होता है, उसको जो भी प्लेट में आके जो भी खाना दे देता है, या यू नो खाना इज़ लाइक अ मेटाफर ओवर हियर, लेकिन उसको जो भी सर्व होता है ना प्लेटर में, वो कहती है ओह थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट, वट एवर इट इज़, नो मैटर हाउ बिटर इट माइट बी, नो मैटर हाउ बिटर द प्रसाद इज, वो खा लेगी. वो चाहे नीम का पत्ता ही क्यों ना मिले उसको प्रसाद में, वो भी खा लेगी वो. ठीक है, शी इज़ अकोमोडेटिंग, शी इज़ अंडरस्टैंडिंग, शी इज़ बींग पेशेंट एंड सेल्फलेस. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, बट यू नो लाइक आई सेड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेशेंस एंड काइंडनेस एंड जस्ट यू नो बींग अकोमोडेटिंग एंड नाइस, एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अबैंडनिंग योर सेल्फ, अबैंडनिंग योर ओन डिज़ायर्स. आई थिंक द ओनली टाइम वन शी एक्चुअली सी स्पीक्स आउट हर ट्रूथ एंड शी एक्चुअली यू नो शो सम काइंड ऑफ अ वॉइस फॉर हर सेल्फ इज़ वेन गौतम कम्स एंड कन्फ्रंट्स हर कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह. मीरा कहती है देख भाई ये तेरा पैटर्न है, तू आज मीरा के पीछे, आज मेरे पीछे है, परसों कल वरोनिका के पीछे था, उसके बाद जैसे ही मैं हाँ बोल दूंगी वहाँ पे एक और लड़की आ जाएगी, तुम उसके पीछे भागोगे, ये तुम्हारा पैटर्न है, तुम लाइफ में कभी सीरियसली हो ही नहीं सकते. लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो सब छोड़ के वापस अपने हस्बैंड के पास चली आती है. फिर यू नो देन शी इज़ एक्चुअली फाइनली लर्निंग टू चूज़ हर सेल्फ. फिर उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं देखो हम दोबारा ट्राई करते हैं, वी शुड यू नो बी मैरिड और वट एवर, एंड शी इज़ लाइक नो नो ब्रो आई वॉन्ट गो बैक टू इंडिया. सो शी लीव्स हिम फाइनली. आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट द ओनली पॉजिटिव चेंज दैट यू एक्चुअली सी दैट कमिंग आउट ऑफ दिस इज शी गोज बैक टू इंडिया एंड शी चूजेज हर सेल्फ. लेकिन फिर गौतम आ जाता है बीच में और गौतम कहता है देखो मैं आ गया. वेरोनिका भी आती है, कहती है ओ आई एम सो सॉरी मैंने ये गड़बड़ कर दी एंड यू नो आई शुड नॉट हैव डन दिस, एंड गौतम रियली लव्स यू अगेन. वेरोनिका इज बींग यू नो लाइक अ पीपल प्लीजर, लाइक शी रियली वॉन्ट्स गौतम, एंड इफ शी वॉज यू नो इफ शी रियली न्यू हर पैटर्न, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि ठीक है You want Meera, you should go with Meera, but it doesn't mean I have to be present at your wedding. I can keep my distance from you. Matlab, a healthy person would be like, theek hai. I mean, I necessarily don't support this. I understand that you love this other girl. Lekin, main apna distance rakhungi yahan se and I'm not going to go further into this, right? लेकिन वो जाती है, पूरी दिल्ली जाती है मीरा को वू करने, ऑफ लाइक स्वीप हर ऑफ हर फीट एंड ऑल ऑफ दैट. तो ओ ऑल इन ऑल ठीक है, इट डज़
result in a happy ending. And Meera is again like, she got served Gautam on a silver platter. और उसने फिर गौतम को हाँ बोल दिया, जबकि उसको पता है गौतम का पैटर्न ये है. लेकिन गौतम ने कभी ये नहीं बोला कि ब्रो मैं अपनी पैटर्न्स चेंज करूँगा. नो, ही जस्ट सेड सॉरी, आई वाज कंफ्यूज्ड. सो ये सॉरी वॉरी का मतलब कुछ नहीं होता है जब तक आप अपने पैटर्न्स और अपनी इंटरनल वूंड्स और अपने इंटरनल जो आपके बैगेज है उसको आप आइडेंटिफाई करके उस पर काम नहीं करते हो. राइट, सो दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट गाइज. वी आर गोना गो इनटू अ सॉन्ग ब्रेक राइट नाउ. And we only have about 10 minutes, so stick around and then let's wind up this beautiful discussion that we are having.

guys. We are finishing up our last hour over here. It is 9:52 on the clock. मैं आपके साथ सिर्फ 5-8 मिनट ही हूँ, 5-10 नहीं, 5-8 मिनट ही हूँ. तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेगमेंट. लेट अस वाइंड अप एंड कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन कॉकटेल वन के कैरेक्टर एनालिसिस. ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, यू नो, इन एन आइडियल वर्ल्ड, नॉट इन एन आइडियल वर्ल्ड, लेट्स जस्ट से इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड क्या होता. इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड जैसे मूवीज में तो क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होता है ना, यू नो, एवरी वन इज लाइक, यू नो, दे ऑल, द गर्ल गेट्स द गाय, गाय गेट, यू नो, गर्ल गेट्स द गाय गेट्स द गर्ल, एंड देन द थर्ड व्हील इज लाइक, हाँ, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर यू, वगैरह वगैरह. लेकिन इन अ रियल सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन, अगर ऐसे तीन कैरेक्टर्स होते, ऐसा कुछ सिचुएशन होता, सबसे आइडियल सोल्यूशन तो नहीं, बट आइडियल सिचुएशन पता है क्या होती. वो बंदा कहता, पहली बात तो मीरा को ट्रस्ट इश्यूज हो जाती. पहली बात तो वो या तो बेवकूफ़ है, वो उसकी बातें में आ गई फिर से, या फिर उसको ट्रस्ट इश्यूज हो जाती कि भाई ये तो गौतम तो एक लड़की से दूसरी लड़की पर जंप कर रहा है, मैं तो आई कॉन्ट रियली ट्रस्ट दिस गाय. अ स्मार्ट गर्ल, विच आई थिंक मीरा इज, ऑनेस्टली वी आर रियली अंडरमाइनिंग हर, आई डोंट थिंक शी इज लाइक दैट नाइव. लेकिन अ स्मार्ट गर्ल वुड हैव बीन लाइक, ओके ब्रो, ठीक है, तुम आ रहे हो मेरे पास, ठीक है, यू डोंट लव वेरोनिका एनीमोर, यू आर सेइंग यू लव मी, यू आर सेइंग यू आर सॉरी, यू आर सेइंग दैट यू गोना चेंज योर पैटर्न्स, आई विल सिट एंड आई विल ऑब्जर्व फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, कि तुमने एक्चुअली अपने पैटर्न्स चेंज किए कि नहीं किए. ठीक है, एंड गौतम ऑन द अदर हैंड वुड हैव बीन लाइक, ओ कूल, दैट इज अ ग्रेट वे फॉर मी टू शो अप टू माई वर्ड, यू नो, कि मैंने ये प्रोमिसज किए हैं. खाली एम्प्टी प्रोमिसज ना देकर मैं बोलूँगा कि नहीं, ठीक है, आई विल शो यू माई कंसिस्टेंट एफर्ट्स, वी डोंट हैव टू डेट राइट नाउ, वी डोंट हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप और गेट मैरिड, तुम अपना टाइम लो टिल यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट मी, एंड आई विल शो यू माई कंसिस्टेंट एफर्ट्स कि आई एम हियर फॉर यू, वगैरह वगैरह, एंड मैं कहीं नहीं जा रहा. दैट वुड हैव बिन आइडियल. एंड देन मीरा, नॉट मीरा, सॉरी, वेरोनिका ऑन द अदर हैंड शुड हैव बिन लाइक, ठीक है, ओके, obviously I love this guy and she's my bestie, but at this point seeing the both of them together obviously bothers me, and if I'm, you know, and if she actually realizes her own feelings, she's not going to try and suppress it, and she's not going to try and impress her best friend or Gautam. Again, she's trying to be a people pleaser, you know, just by being ki nahi main bhi tumhari shaadi mein aaungi, meri best friend ki shaadi ho rahi hai, I will show up, wagera wagera. She's not going to do that, okay? She would be like, okay, fine, I understand, but I will distance myself from this situation, because obviously when I

see my love and my best friend getting married, obviously it's gonna hurt me. So main thoda sa back, I'll take two steps back. And you guys, I hope you have a wonderful life together. If she's really that sorted, which, I'm hoping she realizes at some point of time. And then she says, ki theek hai, I don't want to be a part of this wedding or anything, but you're not going to have my blessing. But it's okay. I accept it and I'm ready to move on. That is what an ideal, practical, mature ending to the movie would have been. However, बॉलीवुड मूवीज हैं सब ऐसे थोड़ी ना होता है. इतना प्रैक्टिकली सोच रहे होते तो बॉलीवुड मूवीज बॉलीवुड थोड़ी ना होती, राइट? तो गाइज, इसी तरह के डिस्कशंस के लिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, इफ़ यू वॉन्ट टू डू मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ डिस्कशंस एंड मोर ऑफ दीज साइको एनालिसिस स्टोरीज, देन ज्वाइन मी टुमारो फ्रॉम 7 to 10 PM. दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ एंड आई होप यू हैड ए वंडरफुल वंडरफुल वेंसडे एंड आई विल सी यू टुमारो Thursday, 7 to 10 PM. Thank you and good night. ये गया था भाई.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
3: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस
2: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
3: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
4: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
5: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
0: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
7: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
6: नहीं
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है
6: नहीं
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
6: वो भी नहीं
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा?
10: हेलो, तुम डैलस में हो? यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: The gorgeous twins Sukriti and Prakriti ready to drop their biggest song of the year. The footage of the video being shot has leaked.

0: खाली सी खिड़की है,
1: कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है,
0: कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है,
1: कहीं कुछ मुंडेरों

0: जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, हो हो हो हो।
1: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
2: Yeah, it's coming up.

जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।

0: मैं मंदर क्यों जावा मेरा यार खुदा है मैं मस्जिद क्यों जावा मेरा यार खुदा है
1: बिल्लो

नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी। मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी।

जिंदगी से खालू शिकवा तू नहीं, एक हार है यार थानेदार का फतवा तू नहीं, अता पता तू बता कोई सुरा बेसुरा ना रफी ना लता, खालू प्लीज बता तू गया तो कहां, मेरा सुना है जहां कहीं दिखता नहीं तेरे जूते के निशान, सर पीट वहां कोई सजदा तू नहीं, तेरे बिना जिंदगी से खालू श

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: कभी कभी।
1: नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: Hello, everyone. You're tuned into 104.9 FM Funny Share Radio.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: IUSA, this is Imran Hashmi.
3: Hi, this is Isha Patni.
2: You're tuned into 104.9 FM Funny Asia Radio.
3: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
2: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awar Appan 2 in cinemas from 14th August.

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बल्ला, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं?
1: दिया। मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की तैसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के. डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

0: कभी उन्हें।
1: क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lights, mic, Bollywood, Fanasia, Fanasia.
1: Allah. आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है.

0: मेरी बात।
1: मतलब
0: मेरा फैन बनना?
1: तेरा फैन बनने के लिए मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही तेरा फैन हूँ।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hi USA, this is Imran Hashmi.
4: Hi, this is Isha Patni.
3: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
4: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
3: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Aavara Pan 2 in cinemas from 14th August.

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

The Magic 24/7. Only on 104.9 FM.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: What's up, ladies? Have you met my friend Harry?

0: Lights, mic, Bollywood, Funasia!
1: Hare Krishna.

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 Karat Pure on 104.9 FM.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। टैलिस्मैन रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
2: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
3: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
2: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
3: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
2: इंडिया तक.
3: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
0: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशन, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 minute वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए FunAsia रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
7: Ladies and gentlemen, if you are tuned in, please receive my very warm welcome to the show this morning. It's Thursday, the 13th of April. सबसे पहले तारीफ सुपर वाले की जिसने दुनिया बनाई. चांद सितारे बनाए, ज़मीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, यारी मदद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एज वी गेट स्टार्टेड with our program. In a rather nostalgic way,

0: This part of our show is proudly brought to you by AG FinTax, one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States. So whether you're an individual, a startup, or an established business, AG FinTax offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services, they help keep your finances organized, compliant, and future ready. Trusted, efficient, and committed to your success, AG FinTax is your partner in building a stronger financial future. You can call them 469-942-9888 or visit agfintax.com.
1: यार मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
2: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
2: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
3: फाइंड द मंगल सूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
4: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
5: Hocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: It's Hoko.
7: अरे बस भी करो यार
6: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है
7: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है
8: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी आइकॉनिक सैंडविचेस डिलीशियस करीज चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में वही आइकॉनिक फ्लेवर्स वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड कैटरिंग ऑप्शंस टेस्ट इंडिया रीलिव मेमोरीज
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
14: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए
10: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर कोई बात नहीं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग फाइब्रो स्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन
12: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे
7: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
7: कहाँ
15: फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी केटरिंग सर्विसेज प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
11: फूडिस्तान इन ऑबरी मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट
5: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
3: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
5: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: away. Diamond rings, pendants, earrings or bridal jewelry per buy two get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price per. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: वेट, इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं।

0: करो 888-888-9914।
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
2: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
3: हेलो,
4: मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
3: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
5: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट। सैटरडे टू संडे 11:30 AM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
7: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
8: Hocho.
9: Hoko.
8: Hocho.
9: Hoko.
8: Hocho.
9: It's Hoko.
10: अरे बस भी करो यार।
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
10: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
5: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to game.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
4: कहाँ?
6: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन Asia and enjoy 10% discount.
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
8: उमर ख्वाजा।
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
16: लिया।
15: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
16: नहीं आया।
15: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772। That's 972-863-7772.
3: Visit www.senadainc.com today.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में? सब संभाल लेंगे।
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

बहुत से परचम लहराएंगे एट द कोमेरिका सेंटर एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज द डे आफ्टर टुमारो एज द इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास सेलिब्रेट्स द 49th आनंद बाजार सेलिब्रेटिंग द 80th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जीनी हुकम मेरी आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
2: मिराज लाउंज चलिए मेरी आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
1: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
2: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
1: और एंटरटेनमेंट,
2: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
2: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स।

0: Kids. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Tara Commercial Energy, jo aapke business ko roshan rakhe.
1: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
2: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
3: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
2: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
3: इंडिया तक।
2: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज गपशप गली विथ मीठू. हमारे कई सारी बातें चलती रहती हैं. 11 बजे के बाद हम कुछ टॉपिक्स उठाते हैं और चाहते हैं कि आप उनमें कंट्रीब्यूट करें, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू कंट्रीब्यूट इन दोज रिगार्ड्स. लेकिन उसके अलावा भी ना, इफ़ यू हैव एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ मी, यू कैन यू नो डी एम मी. My Insta handle is RJMeToo, ladies and gentlemen, MITHU. That's how you can find me on social media. और आपके टॉपिक्स ना अच्छा लगेगा कि मुझे पता चले, क्योंकि जो मुझे इंटरेस्ट करता है वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन पता तो चले कि हम सेम पेज पे है कि नहीं. वैसे टॉकिंग अबाउट पेज, पेज 3 ईटरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू एंड मी आर ऑन द सेम पेज ऑन, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के बाद ये कहना बहुत ही अननेसेसरी लगता है कि जाइएगा ज़रूर. पेज 3 ईटरी.com इज़ द वेबसाइट. चेक आउट द मेन्यू इफ़ यू हैवन्ट बीन देयर. That fusion Indian food that they bring, they are bringing, you know, those modern flair, ek jo unke Indian street food ke saath wo lekar aa rahe hain, that is something kamal. क्या मतलब लैंग्वेज का क्या हाल हो रहा है यार, कि एक सेंटेंस में कितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स, हिंदी के वर्ड्स जुड़ के ना ये जो हिंग्लिश बन गया है ना, बस ऐसा ही कुछ हमारा शो भी रहता है. कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ इन बिटवीन, कुछ मस्ती भरे, कुछ सॉफ्ट, एवरीथिंग. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: यू आर लिसनिंग टू गपशप गली और इस गली को लेकर आए हैं. दिस सेगमेंट ऑफ द गली हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूएस. और अगर आपका एक स्टार्टअप है या आपका एस्टैब्लिश्ड एक बिजनेस है, इन एनी विच केस वो आपकी मदद कर सकते हैं और पूरी तरह से आपके लिए वो फाइनेंशियल वो जो एक गाइडेंस या एक ऑर्गेनाइज्ड एक तरीका आपको चाहिए, दे कैन मेक यू एब्सोल्युटली फ्यूचर रेडी. सो गेट इन टच विद देम. बहुत सारे इनके सर्विसेज जो अवेलेबल है, राइट फ्रॉम बुक कीपिंग, पेरोल, अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकॉन्सिलिएशन, टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, financial reporting and also business advisory services that they have for you. So all you need to do is make that call and get in touch with them and see how they can help you. 469-942-9888 and agfintax.com is the website. Ek chota sa break, aur break ke baad hamare gaane aur hamari baatein yahin par on Gapshap Gali with me too.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
6: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
5: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
7: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
3: व्हाट वुड हैपन टू योर बिजनेस इफ अ की ओनर, पार्टनर और टॉप एम्प्लॉई पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
10: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
9: कैसे?
10: Page 3 eatery?
9: No, not another restaurant again.
10: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
9: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं.
11: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
12: Hi USA. This is Imran Hashmi.
13: Hi, this is Isha Patni.
12: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
13: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
12: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awarappan 2 in cinemas from 14th August.

एज ऑलवेज कुछ हटके गाने इस सेगमेंट में, एंड इफ यू लाइक इट जस्ट रजिस्टर इट इन योर माइंड और राइट इट समवेयर, क्योंकि मुझे कई बार ध्यान नहीं रहता कि कौन से गाने मैंने प्ले किए होते हैं. कई बार मुझे समरी कॉल्स बैक आस्किंग फॉर द सॉन्ग, एंड देर आर टाइम्स जब एक ही टाइटल के कितने सारे गाने होते हैं, एंड सो समटाइम्स इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द सिंगर. तो अगर आपने ये गाना जो अभी अभी सुना आपको पसंद आया, तो मैं आपको बता दूं अंबर दास इज द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वन, क्योंकि गाया भी उन्होंने और कॉम्पोज भी उन्होंने ही किया. एंड इट इज द प्रिविलेज फॉर सो मैनी आउट देयर जो कि अच्छा गा लेते हैं, कॉम्पोज कर लेते हैं या किसी भी एक स्किल में अच्छे हों, कि आजकल कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं टू शो केस देयर टैलेंट एंड रीच टू नंबर ऑफ पीपल. एंड ये गाना जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ, इस गाने के पीछे नाम बड़ा पॉपुलर है. पता नहीं गाना आप लोगों ने कितना सुना है. लेट्स गेट इट फॉर यू. कपल ऑफ इयर्स बैक दिस वाज वेरी स्पेशली फॉर रकुल प्रीत सिंह्स वेडिंग. एंड द कॉम्पोजर्स नेम विच आई फॉरगॉट टू टेल, तनिष्क बागची.

एंड दैट गला साफ करना जरूरी था क्योंकि कुछ तो खाया है मैंने. मैं बताती हूँ ना, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ अपना, और दबा के गाने सुनते सुनते आप लोगों से बतियाते हुए मैं खाती हूँ. और मैंने कुछ ना मिर्ची खा लिया जिसके कारण बहुत मिर्ची लग रही है मुझे अभी. लेकिन ऑल सेड एंड डन एंड एवरीथिंग अपार्ट, जो चीज़ मैं अभी आपको कहने वाली हूँ ना, कि अगर वक्त निकल जाएगा तो आपको मिर्ची ज़रूर लगेगी कि आपके दोस्तों ने या किसी ने इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया. एंड दैट्स तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़रूर याद रखें, एन्जॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन है कि अगर आप कुछ पुरानी ज्वेलरीज अबव 18 कैरेट अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो 0% डिडक्शन ऑन दैट. दैट यू मस्ट रिमेंबर, तनिष्क इन फ्रिस्को इज द प्लेस टू गो. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो कि आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. ये है गपशप गली विथ मीठू. पानी पी के वापस आती हूँ. हाँ मैं

लिसन, मेरा ना फोन कॉल आ रहा है. आज मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं. एंड वेयर इज माई फोन? आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. बट जो भी मुझे कॉल कर रहे थे, अगर आप मुझे सुन रहे हो ऑन एयर, तो प्लीज थोड़ी देर बाद कॉल करो. बाकी बात रही ये म्यूट पे रखने की, इसकी ना मैं क्या शिकार हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. कि मैं यहाँ पे स्टूडियो में आती हूँ और मैं अपना फ़ोन म्यूट कर देती हूँ, और फिर म्यूट से मैं हटाना भूल जाती हूँ. एंड देन आई मिस सो मेनी कॉल्स एंड पीपल. आई एम सो सो वेरी यू नो नोन फॉर नॉट पिकिंग अप कॉल्स. रियली बहुत बदनाम हूँ इसके लिए. लेकिन इसके लिए दोष भी मैं केवल आप लोगों को दूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिसनिंग प्लेजर में डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसीलिए म्यूट पे रखते हैं हम अपना फ़ोन. और हम जैसे कुछ कमाल के लोग होते हैं, फिर म्यूट से हटाना भूल जाते हैं. यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. धूप यार, बड़ी कड़ाके की धूप है. एंड द लैक ऑफ रेन नियरली फॉर अ मंथ नाउ. इसके साथ जो विंड है, इसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ये है कि फायर रिस्क बढ़ जाता है फॉर टुडे एंड टुमारो पर्टिकुलरली. प्लीज़ बी माइंडफुल अबाउट दैट. नो रेन इज़ एक्सपेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज एज वेल. हीट एडवाइजरी है हमारी 8 PM तक है. और क्या बता सकती हूँ कि फिलहाल टेम्परेचर 89 डिग्रीज पे है. लेकिन ज़्यादा खुश मत होएं, क्योंकि आपका टेम्परेचर कुछ 102 के करीब जाएगा. लेकिन जो हीट इंडेक्स है, उसकी वजह से आपको 106 के आसपास का फील होगा. सो यस, दैट इज योर वेदर फोरकास्ट फॉर टुडे, टुमारो एंड द कमिंग डेज. तो इसी बात पे ये गाना हो जाए, सिद्धांत चतुर्वेदी जो कि जाने माने एक्टर हैं, ही सिंग्स एज वेल एंड रैप्स एज वेल. दिस इज फॉर यू. धूप.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Beta, 95% die?
2: हाँ मम्मी.
1: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
1: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
16: Tracks that put you on the right track.

That song very specially for all Anita Raj fans. Anita Raj, जो कि अपने जमाने में काफी जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं, 80s that we are talking mostly. And उसके बाद वो फिटनेस रूटीन जो अपने शेयर करती हैं, जो कोर एक्सरसाइजेज एंड वो सारी चीजें जो शेयर करती हैं, दैट टेल्स आज की उनके फिटनेस का राज क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फॉर अदर्स टू स्टे फिट वन कैन फॉलो हर. बहुत अमेजिंग एक उनका एक अलग साइड हमें दिखा आफ्टर शी स्टार्टेड हर फिटनेस शेयरिंग हर फिटनेस रूटीन्स एंड एवरीथिंग. वेल नोन फॉर दैट एक्चुअली नाउ शी इज़ अनीता राज, लेडीज एंड जेंटलमैन. और इतनी सारी बातें क्यों, क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है. शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1963 और आज शी टर्न 63, लेडीज एंड जेंटलमैन. और उनको देख के लगता नहीं है सच में इतना फिट है, इतनी फिट हैं वो. एंड टॉकिंग अबाउट बर्थडे सेलिब्रेशंस, आई एम गोइंग टू टेक यू टू अनदर वन. यूजुअली सी एट दिस टाइम मैं कुछ ऐसे गाने लेकर आती हूँ ऐसी फिल्मों से जो आज के दिन रिलीज हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ ना आज इंटरेस्टिंग नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक ऑल्सो. तो मैंने सोचा कि ठीक है वो नहीं करते हैं, हम कुछ और रिलीज की बात करते थे कर लेते हैं. एंड दैट इज अबाउट पीपल बॉर्न ऑन दिस डे, सेलिब्रिटीज आर लव्ड आइकॉन्स बॉर्न ऑन दिस डे. तो फिल्म इंडस्ट्री की ही बात हो रही है यहाँ पे. अनीता राज के बाद वैजयंती माला पे जाएं. 93 शी टर्न टुडे एंड वन ऑफ द आइकॉन्स ऑफ इंडियन सिनेमा दैट शी हैज़ बीन. 50s एंड 60s में उनकी कितनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में फिल्म आई है और उनका एक अलग ही उन्होंने अपना नाम और काम छोड़ा है इन द इंडस्ट्री. अब एक्टिंग तो नहीं करती है लेकिन डांस अभी भी करती हैं. एट द एज ऑफ 93 भरतनाट्यम इज़ वॉट शी इज़ नोन फॉर. एंड इस गाने को अगर आपने देखा है जुअल थीफ से, दैट देवानंद फिल्म, देवानंद एंड वैजयंती माला फिल्म, ये एक शॉट में किया गया था विच इज वेरी अनहर्ड ऑफ. एक लॉन्ग डांस रूटीन है ये, बट शी डिड इट एट वन गो. आफ्टर ऑल दैट इज वैजयंती माला फॉर ऑल ऑफ अस. विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे.

And it is Vaijayantimala's 93rd birthday that we want to wish her, along with all of you who are a big fan of Vaijayantimala. Because birthday celebrations are happening and there is another icon that I don't talk about, so this segment will not be complete. And that is Sridevi, ladies and gentlemen. She would have celebrated her 63rd today. And it's been more than 10 years now since we lost her. Lekin aaj bhi unki kami utni hi khalti hai. I don't know kitna miss karte hum sare. Aur wo jo ki acting ki acting ke lessons unki acting dekh ke unki films dekh ke lete hain, wo bhi I am very sure. And Priyanka Chopra, you know, marked her birth anniversary with a heartfelt remembrance of the icon, and she unveiled this book. Is book ka naam hai Empress, the definitive biography of Sridevi. Aur ye ek upcoming book hai jo ki release hone wali hai jaldi. And the actress's extraordinary life and career is what is chronicled in this one. To ye jo hai, ye unveiling jo hai, ye काफ़ी कमाल का है, कंसिडरिंग कि इट इज़ हर बर्थ एनिवर्सरी टुडे. और इस बुक में उनकी रिमार्केबल जर्नी को कवर किया जाएगा एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, जो इंडियन सिनेमा की डेफिनेटली मतलब पहली ट्रू पैन इंडिया फीमेल सुपरस्टार कहलाई. एंड उनके 5 लैंग्वेजेस में उन्होंने जो काम किया है, कुछ 300 से भी ज़्यादा फिल्म्स की हैं. उनके करियर स्पैन का जो 5 डेकेड्स था, वो जो स्पैन किया है 5 डेकेड्स, इट इज़ ऑल अबाउट दैट एंड much more. And the name of the book is again, it is Empress, the definitive biography of Sridevi, and that is the upcoming book by Dheeraj Kumar. Aapki madad chahti hu, 972-235-5555. If there is a song that is playing in your mind right now jo Sridevi ka aapka favorite gana hai jo dhoond nikalna bada mushkil hai, to call kijiye 972-235-5555. And yes, you need to give me a call if you want to listen to that one favorite song of Sridevi's. बुक के बारे में आगे बताते हुए मैं ये बता सकती हूँ कि एम्प्रेस एक बिल्कुल बिफिटिंग एक टाइटल नहीं है, आपको लगता कि जो कि वो एक एम्प्रेस के तौर पे ही वो उस ज़माने को वो यू नो सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करती हैं जब मेल एक्टर्स का बोलबाला था. वहाँ पर श्रीदेवी का अपने आप को इस तरह से you know, करना वॉज very very impressive. All right, if you're going to bank on my choice here, I'm going to go with this next track from a more recent film of Sridevi's.

0: आई जस्ट रियलाइज कि यू नो हम श्रीदेवी का एक ही गाना क्यों सुने, हम अगले सेगमेंट को पूरा हम श्रीदेवी के गानों के साथ ही सजा सकते हैं. इट इज़ हर बर्थ एनिवर्सरी टुडे एंड वी विल डू दैट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी आर अ बिग फैन ऑफ श्रीदेवी. इसमें कोई शक नहीं. जो हिंदी मूवीज़ पसंद करते हैं वो श्रीदेवी को बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड देयरफॉर वी विल हैव मोर सॉन्ग्स ऑफ श्रीदेवी. इट्स नॉट अ फुल स्टॉप हियर लेडीज एंड जेंटलमैन. इफ यू हैव एनी सॉन्ग.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
3: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
5: Hello, accident claim? Okay. Name of the lawyer?
6: उमर ख्वाजा।
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: How may I help you?
1: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
8: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday.

0: 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
1: Dad, property papers kahan hai?
2: Laptop mein.
1: Investment?
2: Google Drive.
1: Insurance? Passwords?
2: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
1: Dad, wahi to problem hai. Sirf aapko pata hai.
0: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
0: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: Weekend ka plan? Abhi tak nahi mila. First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein. Har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack. Exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower or relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement. Sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Tracks that put you on the right track.
6: And this next track is also going to put you on the right track. It is Sri Devi's birth anniversary. So, har gana इस सेगमेंट में श्री देवी के नाम पे ही हम प्ले करने वाले हैं, उनको उनके गाने प्ले करने वाले हैं. और कामिनी के रिक्वेस्ट पे आई एम गोइंग टू टेक यू टू दिस नेक्स्ट ट्रैक. और मतलब इतना आइकॉनिक गाना है कि जहाँ पर मतलब लिरिक्स भी इतने शुरू में जो है ना, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जावेद अख्तर साहब ने मिलकर वो एक फनी क्यूटिक एक वो एक कैबरे का स्टाइल देने के लिए, कीपिंग इट वेरी लाइट एंड डिलाइटफुल एक्चुअली फॉर ऑल ऑफ अस टू एन्जॉय. तो हो जाए वो मोम्बासा, लसी पिसी, असी तुसी, क्या नहीं है, पिंग पोंग, किंग कोंग, सब है. जी हाँ, आफ्टर ऑल इट इज श्री देवी हु कुड पोर्ट्रे इट सो अमेजिंगली. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: Listen, ladies and gentlemen, while we are talking about all the Sri Devi songs and we'll take up our topic of discussion today, ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल जाए, इसीलिए अभी शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ कि अगर किसी कार या यू नो एक्सीडेंट में है, आप पड़े हैं, स्लिप या फॉल इंसिडेंट आपके वर्क प्लेस पे हुआ है या कोई भी और जगह जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा का नाम आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए, बिकॉज वी कीप ऑन टेलिंग यू हाउ you know productive that connection can be for all of you. You can get your compensation that you so deserve. और आपको ये याद रखना है कि आपको तब तक नहीं pay करना जब तक आप अपना case जीत नहीं जाते हो. So it's a very win-win situation for all of you who have been in a situation जहाँ पे compensation insurance company से निकलवाना एक headache सा लग रहा है, तो attorney Omar Khwaja can sure help you. 469-300-5046 is that number, and free consultation is available for all of you. Do check out their website attorneyomar.com. वो पहला call करें, that free call consultation that you're going to get, and you know, find out if they can be of the great help that you are seeking. Once again, thank you very much for tuning into Gupshup Gali. ये है जिंदगी unplugged. पता है मैं क्या सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि श्रीदेवी की वो पहली फिल्म क्या थी जो मैंने देखी होगी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है. आप में से किसी को भी याद है कि वो पहली फिल्म, द वेरी फर्स्ट श्रीदेवी फिल्म आपकी लाइफ की कौन सी थी? बिकॉज वी हैव वॉच गजिलियन फिल्म्स राइट ऑफ श्रीदेवी, लेकिन मुझे नहीं याद आया एक्चुअली कि वो पहली फिल्म क्या थी. शायद लास्ट मेरी होगी मॉम, मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई डोंट थिंक उसके बाद मैंने कोई श्रीदेवी की फिल्म देखी अभी हाल ही में. लेकिन येस, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल कि आप लोगों ने श्रीदेवी की पहली फिल्म क्या देखी थी. इट इज़ सो फैसिनेटिंग टू फाइंड आउट द फर्स्ट एंड द लास्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि पता नहीं आप में से कितने लोग ये रियलाइज करते हो कि कभी कभी कुछ चीज़ों का हम यू नो वी हैव यूज्ड इट और सीन इट यू नो फॉर द लास्ट टाइम, लेकिन हमको रियलाइज नहीं हुआ. द लिटिल थिंग्स दैट वंस फेल्ट सो ऑर्डिनरी आर जस्ट मेमोरीज नाउ. वो छोटी छोटी आदतें जो हमारी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट होती थी, आज कहीं तो गायब हो गई हैं. तो इस नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस में मैंने सोचा कि इन बातों को ही निकाला जाए. सम मोमेंट्स हैपन सो क्वाइटली दैट यू नेवर रियलाइज they are the last until they are long gone, है ना. तो जैसे कि for example मैं आपको बताती हूँ Nostalgia Express में physical dictionary की बात करती हूँ. आपको याद है कि आपने आखिरी बार कब use किया होगा? भाई मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि what was probably the last word I checked on a dictionary book, you know, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा. तो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें याद रहती हैं ये सारी बातें, I'd like to hear from you. You're live on air.
1: Hi. Neetu, how are you?
0: I am doing fantastic. Tell me, मैं तो आवाज पहचान गई, लेकिन हमारी जनता को बताएं आपका नाम.
1: मेरा नाम अनिल है.
0: अनिल, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बताओ.
1: वैसे तो देखी होगी, लेकिन सदमा जो थी ना वो मेरे को याद है कि शायद मैंने, मेरे को लग रहा है कि
0: वो पहली फिल्म थी आपकी. आपको ऐसा लगता है?
1: ऐसा लगता है क्योंकि वो एक ऐसी पिक्चर थी वो जो दिमाग से जाती नहीं है.
0: दैट इज फॉर श्योर. ये तो सही बिल्कुल कहा. फॉर द पीपल हु हैवंट वॉच सदमा, इफ यू वांट टू यू नो इन अ वेरी न्यू वे डिस्कवर श्रीदेवी, दिस वुड शुड बी योर फर्स्ट फिल्म टू वॉच. वेल, थैंक यू सो मच अनिल फॉर शेयरिंग दैट. मेरे ख्याल से मेरी भी यही रही होगी, पता नहीं, बिकॉज इट वॉज इन अर्ली 80s दैट इट केम, राइट?
1: या इवन दो इन तमिल वगैरह में वो तमिल मूवी वगैरह में वो चाइल्ड एक्ट्रेस वगैरह कुछ आई थी, लेकिन इतना नोटिस नहीं करा था.
0: हाँ, एग्जैक्टली, दिस वाज वन ऑफ द क्रॉसओवर्स व्हेन शी डिड एंड हाउ. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. तो उसी फिल्म का ये बहुत अच्छा सा गाना मैं लगाने वाले हूँ. बिग फैन ऑफ दिस सॉन्ग. There are so many things that we have, you know, regularly used and done. वो आखिरी बार कब हुआ हमें पता ही नहीं चला. तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ें रिवाइव कर रही हूँ नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस पे.

What an amazing song this is, and what a beautiful portrayal of the character that Sridevi played in this one, along with Kamal Haasan. Unforgettable film है. मैंने जैसे कि कहा ना कि श्रीदेवी की वो आखिरी या पहली फिल्म क्या थी, शायद वो याद करना बड़ा मुश्किल है. और जैसे कि देर आर सो मैनी अदर थिंग्स, इट इज़ सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि वो आपने आखिरी बार क्या किया था उस चीज़ के साथ, या कब किया था आखिरी बार. यू नो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा ना कि फिजिकल डिक्शनरी, वो जो एक वर्ड ढूंढना पड़ता था ना, जब मीनिंग आपको पता नहीं हो किसी वर्ड का, तब थोड़ी ना सीरी या एलेक्सा का कन्वीनियंस था कि यार you would just say कि you know, hey Siri, what's the meaning of this word करके आपने खोल के पता कर लिया. ऐसा नहीं होता था. We had to physically open a massive heavy dictionary book. पन्नों को पलटना पड़ता था, alphabetically उस word को ढूंढना पड़ता था, A B C D से लेकर फिर आगे जाना पड़ता था. The whole thing used to be a mission really. और ढूंढते ढूंढते randomly तीन चार और नए शब्द तो आप सीख ही लेते थे, है ना. It was an experience in itself. फिर एक दिन हमने अपने आखिरी वर्ड को उस पेपर डिक्शनरी पे कभी सर्च किया होगा, बुक को बंद किया होगा, और उसके बाद सीधे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, और पता ही नहीं चला कि वो जो ट्रांजिशन हुआ और वो आखिरी बार हमने वो डिक्शनरी कब यूज़ की थी, वो शायद अब याद ही नहीं. तो वर्ड कहाँ से याद रहेगा कि कौन सा आखिरी वर्ड शायद आपने अपने फिजिकल डिक्शनरी पे ढूंढा होगा. इट इज़ कम्प्लीटली गॉन नाउ, राइट. सो देर आर सो मैनी थिंग्स. इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस इन योर माइंड, ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड आई have something very special for you. अगर आप हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ शेयर करते हैं इस नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस पे ना, तो सैन इडली की तरफ से वही आपके बिल्कुल घर वाला स्वाद जो आपको बहुत पसंद है डोसा में, वही आएगा. या तो आप किसी के घर जाते थे और वो एक्सट्रीमली स्पेशल डोसा बनाते थे ना, वही वाला फील आएगा सैन इडली रेस्टोरेंट में. डोसा ऑफ योर चॉइस एंड वन फिल्टर कॉफ़ी फॉर यू एट सैन इडलीज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. अगर आप मुझे बताते हैं ऐसी कोई चीज़ जो अब नहीं चलती, लेकिन आपने वो की और आखिरी बार जो की वो आपको याद है और आप शेयर करना चाहोगे, 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. 100% प्योर वेजिटेरियन खाना एट सैन इडली दैट यू गेट. और मैं आपको बता दूं, केटरिंग भी आप कर सकते हैं. जैन फ्रेंडली फूड ऑप्शंस आर देयर फॉर केटरिंग एज वेल. सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो कि हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन पे है. याद रहेगा ना, याद रहना चाहिए आपको ये अगला गाना भी, जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स दैट श्रीदेवी डिड इन बॉलीवुड. फिल्म का नाम जूली.

0: And I am also waiting for few more answers from all of you. Nupur ne already San Idli se jeet liya hai. Lekin, you know what? There is another giveaway from San Idli that I'd like to give to our next caller here. You're live on air. Bataiye. Bataiye the last time you have used something.
1: Yeah. Actually, two things, but they were at tandem. Matlab, aapko ek ke bina aap dusra nahi use nahi kar sakte the.
0: Okay.
1: So one is जैसे मम्मी पापा कैसेट्स मुझे लेके नहीं देते थे यहाँ पे इन यूएस आई वाज रेज्ड इन यूएस तो मैं गाने रिकॉर्ड करती थी टेप रिकॉर्डर पे एंड देन वॉकमैन पे सुनती होती थी उसको
0: दैट इज द वॉकमैन एंड द ऑडियो टेप्स द वंस दैट यू यूज्ड टू क्रिएट योरसेल्फ वो
1: हाँ तो फ्रेंड्स से बोरो करके वो टेप रिकॉर्ड करती थी एंड देन आई वुड लिसन टू इट इन द वॉकमैन एंड गिव द टेप बैक टू माय फ्रेंड्स
0: ओह माय गॉड कैन यू इमेजिन दैट टाइम डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द लास्ट ऑडियो कैसेट दैट यू और द वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट यू कैन रिकॉल दैट यू प्रोबेबली रिकॉर्डेड ऑन दैट
1: आई रिमेंबर वो फिर तेरी कहानी याद आई
0: फिर तेरी कहानी याद आई और ये कहानी फिर हमने याद की वेल थैंक यू सो मच वाज इट लाइक लेट 90s यू टॉकिंग अबाउट
1: Like early 90s, like 93, 94, like mid 90s, yes.
0: My
1: और मेरे पास अभी भी वो टेप रिकॉर्डर है और वॉकमैन है मेरे पास और मेरे बच्चे दे लव इट लाइक दैट माय किड्स आर टीनेजर्स एंड उनके लिए तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया लाइक विंटेज हो गए हैं तो मैं इतनी पुरानी हो गई विंटेज
0: एंड टेल देम कि ये विंटेज ट्रेडिशन ना फिर से वापस आ रहा है अपेरेंटली वॉकमैन एंड ऑडियो कैसेट ये सारी चीजें वापस आ रही हैं हाउ कूल इज दैट
1: एब्सोल्युटली Yeah, and my kids, they also use the recorder, not recorder, those, what are they called? Maybe mere dimag se nikal raha hai, wo jo gol gol ghumta rehta tha.
0: CD?
1: Nahi, not CD. CD to matlab naya version ho gaya na.
0: Gramophones.
1: हाँ मतलब ग्रामोफोन के वो जो
0: रिकॉर्ड्स
1: होते थे या माय डॉटर एक्चुअली लास्ट ईयर शी वांटेड रिकॉर्डर तो उसको वो लेके दिया विद अ सीडी प्लेयर टेप प्लेयर एंड द रिकॉर्ड प्लेयर
0: लिसन थैंक यू सो मच वी आर गोइंग टू गो इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक बट रियली
2: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
3: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस
2: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
3: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
4: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
5: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
6: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
7: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
9: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
10: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
9: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
10: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
9: ये क्या होता
10: है सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन
13: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया
14: लिया
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया
14: नहीं आया
13: मुझे भी नहीं आया
14: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
11: Visit www.sanadainc.com today.
15: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
16: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
16: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
18: Tracks that put you on the right track.

और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे क्योंकि यहाँ की गर्मी इतनी ज़बरदस्त गर्मी है कि बाहर का कोई इवेंट रखना इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू गो एंड अटेंड देन, राइट। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास की जो ये 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑल इनडोर्स, आनंद बाजार, 2026 सैटरडे अगस्त 15th। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि वीकेंड कोई पड़ रहा है द सेलिब्रेशन, इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन जो हम करने वाले हैं, ये बहुत बहुत कमाल का होगा ये एक्सपीरियंस, क्योंकि एवरी थिंग इज गोइंग टू बी इनडोर्स। इट्स 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कोमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को, एंड यू शुड नो दैट इट्स अ ह्यूज अरीना। इफ यू हैव बीन देयर यू नो दैट। सो इत्मीनान से आए, गर्मी के बारे में बिल्कुल बिना सोच के आए, और पैसे खर्च जो करने हैं वो आपको अपनी तरफ से जो करना है वहाँ पे स्टॉल्स में वो आप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ फ्री इवेंट फॉर एवरीबॉडी टू एंजॉय। यू नो दैट यू हैव अटेंडेड इट ईयर आफ्टर ईयर, एंड द काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दैट IANT ब्रिंग्स, इट डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ बिग शाउट आउट लेडीज एंड जेंटलमैन। खाने से लेकर परेड तक, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग, एवरी थिंग दैट इज गोइंग टू बी लिटरली अंडर वन रूफ, कोमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को इज दैट लोकेशन फॉर यू, योर फैमिली, एवरीबडी टू जॉइन 80th इंडिपेंडेंस डे। इंडिया से जो हमारा जो कनेक्शन है, वो सारे ये सारे इवेंट्स जो वो लेकर आता है, वो बहुत बहुत बहुत नॉस्टैल्जिक एक मोमेंट होता है हमारे लिए, एंड वी आर सो प्राउड टू बी ब्रिंगिंग इट फॉर यू। IANT's आनंद बाजार 2026 सेलिब्रेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

It is the movie Daawat-e-Ishq, jiska aapne ye shayarana, aapne ye gaana suna. Shayarana se seedhe shararat pe jau main. Shararat gaane pe nahi, literal shararat ki baat kar rahi hu. Wo last time aapne apne bhai ya behan ke saath kya shararat ki? Kyunki kya hai na ki jaise jaise hum bade hote jaate hain na, hamari wo shararatein bhi khatam ho jati hai. Wo bachpan wali shararatein jo hai na, wo khatam hoti jati hai. And that's where we should bring it back and talk about it. Kyunki ye है नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, और नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस में हम वो रक्षाबंधन का जो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है हमारे भाई बहनों के साथ, वो शेयर करना चाहते हैं. और फनीशिया और चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट, वी वांट टू सेलिब्रेट इट विथ यू एंड मेक अस पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन. एक मिनट का वॉइस नोट आप भेजें व्हाट्सएप पे 2148377147 एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज, और साथ में ग्रैंड प्राइज पता है क्या है? अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट. यस, दैट्स ट्रू. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप वन मिनट का वो वॉइस नोट जरूर भेजिएगा, ठीक है? वो कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स फनीशर रेडियो के सोशल पेज पे जरूर जाएं, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स राइट देयर. As for Choctaw Casino and Resort in Durant, they are so ready to make unforgettable memories with you. Must be 21 or older to participate in this one. Terms and conditions apply hote hain. Baki aap jante ho, you must play responsibly. Filhal, I want you to take the responsibility of sharing one of your shararat with us, with your brother or sister. हमारे ना एक कज़न है, मेरे कज़न है, और वो भैया ऐसे हैं कि अगर वो रहते हैं तो यार मतलब परेशान कर देते हैं हम बच्चों को, बच्चों को करते थे ऐसा मुझे बोलना चाहिए. एंड देन उनके बिना चलता भी नहीं था हमारा. वो आते थे तो ना रौनक बन जाती थी हमारे महफिलों में कि वो भैया बहुत परेशान करेंगे. जितने भी छोटे भाई बहन होते थे मुझे, आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, और मुझे वो शेल्फ़ में घुसा देते थे एंड देन आई विल बी कॉलिंग आउट माई ताई जी, माय मॉम, माय डैड, एवरीबॉडी, एंड फिर उनको बहुत डांट पड़ती थी. लेकिन वो अगर नहीं होते थे ना, वो भी नहीं हमें पसंद आता था. बच्चे ना बिल्कुल पूंछ के तरह उनके पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे घूमते थे. दैट वाज आर भैया, बबलू नाम था उनका, और बबलू भैया का यही था कि हम लोग बाबलू, बिकॉज आई एम बंगाली, सो हम लोग बाबलू दा बोलते थे उनको, बोलते हैं उनको इनफैक्ट. एंड वो शरारतें लेकिन ख़त्म हो गई हैं सारी, उस तरह की जो शरारतें होती ना. सो इफ़ देर इज़ अ शरारत दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ अस, आपको ऑटोमेटिक एंट्री मिलती है इन टू द कॉन्टेस्ट. तो प्लीज़ एंड पिकअप योर कॉल्स एंड शेयर योर शरारत, बचपन वाली वो जो शरारतें हैं जो वापस कभी नहीं आती हैं, यू नो. सो लेट्स सॉर्ट ऑफ रिमाइंड आर सेल्व्स ऑफ दोज ब्यूटिफुल क्यूट मोमेंट्स दैट वी हैव हैड विद आर ब्रदर और सिस्टर. राइट हियर 9722355555. आपकी जल्दी से वो जो कहानी है ना वो शेयर करो हमारे साथ आके ऑन एयर, ठीक है? ये गाना सुनते हैं, उसके बाद आई शुड गेट योर कॉल्स, ठीक है? नो हेजिटेशन हियर. शरारत की है तो की है यार, चौड़े में शेयर करो.

0: एंड इट इज गपशप गली विथ मीटू. पता है हमारी गपशप शरारतों को लेकर चल रहा है, क्योंकि देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव डन फॉर द लास्ट टाइम एंड वी डोंट इवन रिकॉल, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त खत्म होता है. और जब वो स्मूथ ट्रांजिशन होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता. अब वो बचपन की शरारतों के साथ भी कुछ ऐसा ही तो किस्सा है कि जब हम वो जो एक ट्रांजिशन फेज में होते हैं ना, जब हम एक यंग एडल्ट बनते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ शरारतें कैसे बंद कर दी करना अपने भाई बहनों के साथ. एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों की शरारतें क्या थी, क्योंकि इट इज़ अबाउट रक्षाबंधन. लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन फनीशा रेडियो और चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट की तरफ से आपके लिए ये मौका है कि आप कुछ अमेजिंग डेली प्राइजेस जीत सकते हैं. एंड देन द ग्रैंड प्राइज दैट आई टॉक्ड अबाउट, जस्ट एक मिनट का वॉइस नोट आपको जो भेजना है, व्हाट्सएप करना है @ 2148377147, और यू कैन शेयर इट राइट नाउ. एक मिनट का आप कुछ हमें बताएं जल्दी से कहानी, आपने शरारत की बता दें. आज ये टॉपिक पकड़ा है मैंने, तो बताएं कुछ शरारत जो आपने की है. इतने तो सब अच्छे बच्चे नहीं थे हम बचपन में, थे क्या यार? डैलिस मतलब सलीमा का कॉल आया और फिर ड्रॉप भी हो गया. आई वॉज होपिंग टू हियर सम शरारत फ्रॉम माई डैलिस लिसनर्स हियर. शरारतें केवल मैंने की है यार, मैं अपने आप को काफ़ी सीधी समझती हूँ, उसमें भी मुझे कितनी सारी शरारतें याद है. उनमें से एक शरारत मैं आपको बताऊँ कि हमारी दादी दोपहर को अच्छे से एक नैप लेती थी, और मैं मेरी कजन हम दोनों को भूत सवार हुआ कि नहीं दादी को थोड़ा दादी के मजे लेते हैं. तो वो बेड के एक साइड और मैं बेड के दूसरी साइड, एंड हम दादी को ना गुदगुदी कर रहे थे. बाय द टाइम दादी वॉज टर्निंग टू द अदर साइड, दूसरा जन कर रहा था. दादी को भी बड़ा मजा आता था हम जब इस तरह से करते थे. हमारी पिटाई भी लगाती थी, लेकिन हम वो बहुत इंजॉय भी करती थी, वो प्यार वाली पिटाई होती थी. सो यस, इफ यू हैव अ स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर विद अस ऑफ योर शरारत दैट यू हैव डन, जो नहीं करते हैं यार आजकल, तो जरूर बताएं. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय, आई एम सलीमा. माय कॉल ड्रॉप्ड, आई एम सॉरी.
0: नो वरीज एट ऑल सलीमा. सो टेल अस अबाउट सम बचपन की शरारत.
1: हम लोग पांच भाई बहन हैं, दो बड़े तो बहुत ही बड़े थे, लेकिन हम लोग तीन जो छोटे छोटे थे ना,
0: हाँ,
1: उसमें दो दो साल का फर्क था.
0: ओके.
1: तो मेरे छोटे भाई के कान में खुसर खुसर खुसर खुसर सिर्फ इतना बोलती थी. और फिर हम लोग की सबसे छोटी बहन है ना,
0: हाँ,
1: वो तू क्या बोली उसको, तू क्या बोली मेरे को बता. फिर वो भाई के पास जाएगी, वो तेरे को क्या बोली तू बता मेरे को, वरना मैं मम्मी बुलाती.
0: बिग टाइम फोमो छोटी बहन को. हाँ,
1: यस, बिग टाइम. और फिर वो बोल भी नहीं करती, वो खाली खुसर खुसर खुसर.
0: How funny is that?
1: खुसर, लेकिन वर्ड तो बोल. एक दिन मम्मी आती थी और बेलन से हम लोग तीनों पीटते थे.
0: How funny is that? Well, thank you, Saleema, for sharing the story. और आपको automatic entry मिलती है into the exciting daily prizes giveaway thing. Okay, congratulations,
1: thank you.
0: And you got an entry into it, which means one of you, few of you, let me put it that way, you are in the contest right now, and we'll find out if you win. All right, thank you so much, Saleema. And please hold the line because I'd like to take all your details off air. All right. Thank you. And once again, ladies and gentlemen, बचपन की शरारतें यार, सोच सोच के हंसी आती है अब.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
7: अरे सारे तो सेम है.
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
7: ओ हाँ, ये तो अलग है.
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
11: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक.
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
8: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: भूख लगी
13: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन

0: अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
1: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं.
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं.
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं.
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 9726188555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Hi USA, this is Imran Hashmi.
8: Hi, this is Isha Patni.
7: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
8: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
7: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awarappan 2 in cinemas from 14th August.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ताज़ा एंड न्यू में एक और खबर है हमारे पास, जो शायद कई लोगों को पता हो, और जिनको नहीं पता हो उनके लिए एब्सोल्युटली ताज़ा खबर ये है कि भाई वो जनाब जिन्होंने जिनके पास रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऑफ रिकॉर्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन वन सिंगल डे इन 24 आवर्स टाइम एंड 28 सॉन्ग्स दैट ही रिकॉर्डेड, मिस्टर कुमार शानू विल बी कमिंग टू Dallas and performing for all of us. वो unforgettable 90s के जो गाने हैं वो सारा कुछ होने वाला है. Those melodies, वो जो romance का हमारा language बनता था उनके गानों के जरिए, वो सारा कुछ pure nostalgia that is going to unfold for all of you on September 11th at the brand new Robinson Fine Arts in Plano that you must be at. And वो जो magic है वो वही जानते हैं जो कुमार शानू के गाने बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं. तो yes, get ready for that one. और कॉल कीजिए आप 214-869-2668 पे, या सीधे जाके अपने टिकट्स बुक कर लीजिए eventbrite.com पे जाकर. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप, दिस इज कुमार शानू अनफॉरगेटेबल 90s दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ अस राइट हियर ऑन Funisha Radio 104.9 FM. Very happy to share that information with all of you. 1993 was the year जब उन्होंने एक दिन में 28 songs का जो record बनाया था, and I had the good fortune of interviewing him some time back. और मुझे लगता है कि कितने सारे और सवाल थे मेरे दिमाग में, लेकिन just the excitement of talking to the legend probably बहुत कुछ दिमाग से निकल गया उस वक्त. लेकिन ये ज़रूर पूछती कि उन 28 गानों में से कौन सा गाना उनको वो he can recall that he recorded. Was it probably from Bazigar, do you think? Kyunki Bazigar bhi to 1993 ki thi. Or do you think, was it something else? If you do know anything about it, bataiyega zarur yaar. It is always great information.

You are tuned into Gupshup Gully with me too. और ताज़ा एंड न्यू सेगमेंट में वेरी स्पेशली एक रिकमेंडेशन जो मेरी तरफ से नहीं है बल्कि बराक ओबामा की तरफ से जो आप लोगों के लिए आने वाला है फॉर ऑल दोज हु लव रीडिंग. जी हाँ, फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा इज ऑफिशियली लॉन्चिंग इज ओन पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट का नाम है ए ग्रेट बुक विथ बराक ओबामा और ये सितंबर 24 को ऑडिबल पर ड्रॉप होने वाला है. ओबामा इज टीमिंग अप विथ हिज प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड टू ब्रिंग अस एग्जैक्टली 6 एक्सक्लूसिव एपिसोड्स और हर एपिसोड में ही विल सिट डाउन विद स्पेशल गेस्ट और एज ही कॉल्स देम सम फ्रेंड्स टू डिस्कस अ बुक दैट प्रोफाउंडली सॉर्ट ऑफ शेप्ड हिज वर्ल्ड व्यू. उन्होंने ऐसी किताबें चुनी हैं जिन्होंने यू नो उनकी लाइफ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है और उन्हें खुद को समझने में भी काफी मदद की है. एंड दोज आर द काइंड ऑफ बुक्स दैट ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लेजेंडरी 20th सेंचुरी टाइटल्स लाइक टोनी मरिसन्स सॉन्ग ऑफ सोलोमन एंड जेम्स बॉल्डविन्स द फर्स्ट नेक्स्ट टाइम एंड जॉन ले कैरीज स्पाई थ्रिलर टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई. इस तरह की कुछ किताबें होंगी उनकी पॉडकास्ट पे डिस्कशन होंगी इन ऐसी किताबों पर. और ओबामा का ये मानना है कि लिटरेचर जो है इट मैटर्स नाउ मोर देन एवर. आज के ज़माने में जब हम सब स्क्रीन से चिपक के कुछ ना कुछ ऐसे देखते रहते हैं स्क्रोल करते रहते हैं इतना क्या कहना चाहिए लिमिटेड टाइम अटेंशन स्पैन जो हो गया है. रीडिंग कैन कम्प्लीटली चेंज द वे वी सी द वर्ल्ड एंड ईच अदर फॉर दैट मैटर. सो अगर आपको भी अपने नेक्स्ट रीड की तलाश है कुछ रिकमेंडेशंस की तलाश है इफ़ यू आर अ बुक वर्म सितंबर 24th आपके कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए. Alright, that being said, another Kumar Shanu gana just for all Kumar Shanu fans.

0: चाहिए।
1: और अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर आपके हेल्थ का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, दैट्स पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंजाइटी केयर, फाइब्रोस्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड मच मोर दैट यू कैन गेट डन at Passion Health, and you can schedule your appointment today itself 214-666-6259. Kitne sare six bole maine, main ek bar aur batane wali hu aapko, 214-666-6259. And Passion Health Primary Care is a place where your health is their passion. Aur unhi ki taraf se aap logon ke liye health fact of the day har roz milta hai aapko. So this is about your eyes. Every time you blink, tears spread across the surface of your eyes. Ab kya hai na ki ye jo hai wo tiny particles ko aapki aankhon se clear away karta hai, basically clean karta hai, right? To screen use ka agar aap reduce nahi karte ho तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्क्रीन यूज कैन रिड्यूस हाउ ऑफन वी ब्लिंक विच मे कॉन्ट्रीब्यूट टू ड्राई और टायर्ड आईज. दैट्स द हेल्थ फैक्ट ऑफ द डे. टेक इट एंड यूटिलाइज इट. दैट इज द रीजन वी शेयर इट एवरी डे. ब्रॉट टू यू बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. ऑलराइट, एक गाना जो कि नया रिलीज हुआ है एंड इट इज बाय अमित त्रिवेदी, तो इट इज इम्पॉसिबल दैट आई डोंट टॉक अबाउट इट. Unsung Unreleased is the name of the album. और ये वो गानों का खजाना है, छह गाने होंगे इसमें, और ये वो खजाना है जो कि unreleased गाने हैं, as the name of the album suggests. ये वो गाने हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे यू नो सजेस्ट किया अमित त्रिवेदी ने, बट फॉर सम रीजन और द अदर दे डिडंट गो इन टू द फिल्म्स एंड दे स्टेड अनरिलीज एंड इट वॉज इन हिज हार्ड ड्राइव फोल्डर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड ही डिसाइडेड टू रिलीज these songs one by one. तो एक गाना जो नया नवेला release हुआ है, it is called Chinaro Se. Listen to it and enjoy it.

0: अंगड़ाई लेके एक नया एल्बम जो अमित त्रिवेदी का म्यूजिक रिलीज हुआ है, 15 दिनों में एक एक गाना रिलीज होने वाला है एंड इस एल्बम में 6 गाने होने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन एंड यू शुड बी एक्साइटेड फॉर वेनेसा इवेंट्स बिकॉज ये आपके हर इवेंट को एक्स्ट्रा स्पेशल बना देंगे। दे कवर इट ऑल फॉर ऑल ऑफ यू, वेन्यूज, डेकोर, केटरिंग, एवरी लिटिल डिटेल दे विल कवर फॉर यू। तो जरूर याद रखें, डेकोर के लिए सिग्नेचर इवेंट्स, टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, डिलिशियस केटरिंग बाय द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड that you get with Vanessa Events. Call Hari Basera today at 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner. This is your partner leaving for today.
1: Shravan hame jodta hai bhagwan se, Raksha Bandhan hame jodta hai apno se, aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. Har rishta apni ek kahani likhta hai aur PMJ Jewels उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: PMJ Jewels, now open on 13215 Main Street, Frisco.
3: एक और लड्डू ले लो।
4: थोड़ी और बिरयानी।
3: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
5: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
6: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, वी आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
15: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
14: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
4: डालस की धड़कन 104.9 FM फनी या रेडियो।

क्या हाल है डैलिस? थर्सडे की आफ्टरनून है और मुझे पता है इस वक्त दो तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं। एक जो सोच रहा है कि अरे यार लंच टाइम कब होगी, और दूसरे जो काम करने का सोच रहे हैं। एंड ऑनेस्टली दोनों मेरे लोग हैं। मैं हूँ स्निग्धा और आपके थर्सडे आफ्टरनून को थोड़ा लाइटर, थोड़ा क्रेजियर और डेफिनेटली ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने आ गई हूँ। सो चाहे आप ऑफिस में हो, कार में हो, घर पे हो या लंच के बाद, बस सर्वाइवल मोड में आज की आफ्टरनून हमारे साथ निकल लीजिए। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया 104.9 पर। दिस इज आफ्टरनून अड्डा विथ मी स्निग्धा। चलो बताओ आपकी ब्रेन आज कितना काम कर रहा है, बिकॉज हम शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके ब्रेन को भी डाउट में डाल सकता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू द आफ्टरनून अड्डा ऑन दिस थर्सडे।

ओके लेट्स सी कितना वियर्ड हो सकता है ये थर्सडे आफ्टरनून. सो वियर्ड की बातें करें तो आपने कभी नोटिस किया है रात को सोने से पहले ब्रेन सडनली आपको 2016 17 या कुछ ऐसे चीज़ों की यादें आ जाती है. समटाइम्स इट इज़ अ हैप्पी मेमोरी, समटाइम्स इट्स अ एम्बैरेसिंग मेमोरी. और रिमेंबर जब तुमने सबके सामने वो स्टुपिड आंसर दिया तो व्हाट डू यू कॉल. थैंक यू ब्रेन, अब मुझे सोने दो. इन द नाइट वी ऑल थिंक डिफरेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. कभी कभी अच्छा सोचते, कभी कभी बुरी चीज़ों के बारे में सोचते, कभी कभी फ़नी चीज़ बारे में सोचते. यू नो व्हाई डू वी डू दिस इन द नाइट? क्योंकि रात में हम बहुत शांत होते हैं, क्योंकि दिन भर हम यहाँ वहाँ दौड़ते हुए रहते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द नाइट वी हैव लॉट ऑफ स्पेस इन आवर ब्रेन टू थिंक व्हाट मेक्स अस फील गुड एंड टू थिंक व्हाट मेक्स अस फील बैड टू एंड देन लाफ इट ओवर ऑन यू. इट्स अ गुड थिंग टू गिव योर ब्रेन वो ठंडा दिमाग और वो टाइम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ टू. सो ब्रेन जब वो देयर इज़ ऑक्टेजन करके एक केमिकल रिलीज करता है व्हेन यू आर हैप्पी, सो व्हेन यू आर सैड ऑल्सो ब्रेन डज रिलीज सम केमिकल. सो वॉट एवर इट इज़ फॉर यू एंड ऑफ द डे. सो एवरी नाइट गिव एटलीस्ट 5 मिनट्स टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड गिव एटलीस्ट सम टाइम टू थिंक वॉट यू लाइक. तो इससे ना ट्रस्ट मी अगर तुम ये कर रहे हो यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज, बिकॉज अपने लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है.

You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM par. And speaking of weird, octopus ke teen hearts hote hai, teen. Hum ek heart ke saath it's complicated phase mein hue hote hai. Aur octopus ke saath bhai teen hote hai. And the planet Venus, waha ek din uske ear se bhi longer hota hai. So basically, Venus walon ko Friday ka wait karne kitna painful hua hoga. But sabse relatable weird thing ye hai ki aap room mein jate ho aur bhool jate ho ki kyun aaye the hum yahan. Ye hota hai na, well apparently there's a reason for that. Aur isi reason ke saath hamara next question. Hamara dimag hamare saath करता क्या होगा. इट इज जस्ट आवर वियर्ड फैक्ट्स दैट आई वांटेड यू गाइस टू नो. ऑक्टोपस के तीन हाथ होते हैं एंड वीनस एक दिन भी एक साल जितना ईयर लॉन्ग लगता है. डिड यू गाइस नो दिस बिफोर? इफ यू गाइस ऑलरेडी न्यू इट लेट मी नो. अगर जिनको नहीं पता उनके लिए एक वियर्ड फैक्ट आज मैंने दे दिया है.

चीज बड़ी है मस्त, लेकिन एक्सीडेंट वो बिल्कुल मस्त नहीं है। कार क्रैश, ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल के बाद लीगल बैटल का टेंशन क्यों लेना? अटॉर्नी ओमर ख्वाजा आपकी लीगल फाइट लड़ेंगे और आप सिर्फ अपनी फोकस रिकवरी पर कीजिए। बेस्ट पार्ट, केस जीतने पर ही फीस। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करें 4693005046 या विजिट करें attorneyomar.com। एक्सीडेंट सेकेंड्स में होता है, रिकवरी में टाइम लगता है, सो लेट ओमर ख्वाजा हैंडल द रेस्ट।

बस सोनी सोनी वाइब्स के साथ बिजनेस भी तो होनी चाहिए स्मार्ट. टेक्सास बिजनेस ओनर्स कमर्शियल एंड एनर्जी के लिए स्मार्ट चॉइस चाहिए. ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विसेज और कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स प्रोवाइड कर रही है. तो बिजनेस को रखिए पावर्ड और बजट को रखिए स्मार्ट. कॉल देम एट 844-428-2808 या विजिट करें taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी सोनी सोनी वाइब्स स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस के साथ. एंड हियर वी गो फॉर आवर नेक्स्ट ट्रैक.

0: Hey Maps, take me to my desi grocery store.
1: Calculating route, rerouting.
0: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
1: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
0: क्यों?
1: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
0: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
1: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
0: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी.
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
8: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं.
10: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
12: लैपटॉप में.
11: इन्वेस्टमेंट?
12: गूगल ड्राइव.
11: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
12: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
11: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
0: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
13: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
0: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
15: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Funisia Radio.
16: Love.

Welcome back. You're listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanesia 104.9 FM. But, okay, confession time. Aapne kabhi phone uthaya hai just to check the time aur suddenly 20 minute baad realize hua, main kar kya raha hoon? And then you will be like, मैंने देखा क्यों है फोन, या फ्रिज खोला, अंदर देखा कुछ नहीं मिला, फ्रिज बंद किया और थोड़ी देर बाद फिर खोला, जैसे बीच के 30 सेकंड में फ्रिज ने सीक्रेटली ग्रोसरीज जनरेट कर दी होंगी. एंड हम ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज आर ब्रेन लव्स क्विक लिटिल रिवॉर्ड्स. एंड पता है वो रिवॉर्ड्स क्या है? दैट इज नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, फनी वीडियोज, लाइक, और फिर और एक ये बस चलता ही है. बस एक प्रॉब्लम है, बस एक रील इज नेवर वन रील. इट कैन नेवर बी वन रील एट ऑल. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डू दिस? क्योंकि मैं एक रील खोलती हूँ, मैं 10-15 देख लेती हूँ. 10-15 क्या, कभी कभी मैं 100 भी देख लेती हूँ इफ आई एम टू बोर्ड. दैट इज हाउ सोशल मीडिया इज ग्रैस्पिंग अस. इतना भी ग्रैस मत हो जाओ कि आपके फोन बोले भाई मेरे को थोड़ी देर तो छोड़ दे.

0: अगस्त की महीना है, रक्षाबंधन आ रही है। रक्षाबंधन पर भाई बहन की सबसे यादगार मेमोरी शेयर कीजिए फनेशिया रेडियो के साथ। कॉल करें हमें 972-235-5555 ऑन एयर, आकर अपनी स्टोरी सुनाइए एक मिनट के लिए और जीतिए एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज एंड ग्रैंड प्राइज, सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटॉव कैसीनो एंड रिसोर्ट दुरंत। सो फनेशियो एंड चौकटॉव हैज गॉट यू अ अमेजिंग थिंग टू डू ऑन योर रक्षाबंधन। सो जस्ट कॉल मी एंड अपनी यादगार मेमोरी शेयर कीजिए ऑन एयर एंड पाइए ये सब।
1: This one's for you.

This is Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phoenicia 104.9 FM par. Okay, ek honest sa sawal. Aap internet detective ho? Matlab koi celebrity ka new post aaye aur aap comment se lekar old post tak sab connect karne lag jao. And wait, ye 2024 mein isne ye bola tha aur abhi ye bol rahi hai. Do you ever think like that? Because I do if I remember ki like us time pe maine ye reel dekha, ye log aise bol rahe the, ab everything is changed types. Hum sab thoda detective hai because humans don't like unfinished stories. Agar kisi ka story ending missing ho, our brain wants to know but why. Isi curiosity ne hame bana diya ki internet puzzles ko hum solve karte hue like cryptic clues, codes, hidden messages aur duniya bhar ke log सॉल्व करने में ही लग जाता है बट इंटरनेट का गोल्डन रूल याद रखो वायरल है इसका मतलब ट्रू है जरूरी नहीं कभी मिस्ट्री होती है कभी मार्केटिंग कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी और कभी इंटरनेट को बस ड्रामे चाहिए बॉस और कुछ नहीं आप तब तक गाने सुनते रहिए और मेरे बातें भी

0: 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Aji, sunte ho?
6: Aji, nahi. Aji, sunte.
7: The OG of tax planning, AG FinTax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Fun Asia Radio.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
15: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, classic pole and the food crafted to suit every craving, every appetite.
14: Matlab great food, great drinks and great company, yani ki main.
4: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
16: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
4: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

आई डिड गेट द आंसर एंड इट इज ऑक्टोपस. अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली स्मार्टर बनाने के लिए मीट माई टाइम इक्विटी लेड बाई सी पी ए सुधीर पाई. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ थ्रू माई टाइम इक्विटी आपके गोल्स के हिसाब से पर्सनलाइज फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज ऑफर करते हैं, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो या लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग. इन्वेस्टमेंट ग्रो करे विजिट माई टाइम इक्विटी या कॉल करे 4697021272 टूडे. Until then, the next track.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: Call the SBA Loan Experts.
1: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com।
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
10: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया।
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक, 972-863-772. That's 972-863-772.
5: Visit www.sanadainc.com today.
12: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
5: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक।
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
4: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुंचता है। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर, या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
4: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. डीलिंग विद द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द इंश्योरेंस कंपनी, और साथ ही साथ इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बहुत सारे औकात में पता ही नहीं होती, और साथ ही साथ आपको अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखना है. तो आपके लिए मैं बताऊं कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ख्याल रखिए एंड लेट अटर्नी ओमर ख्वाजा डू द रेस्ट फॉर यू. जी हाँ, नॉट ओनली विल ही एंड हिज टीम फाइट फॉर योर केस, बट दे विल गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और जो बेहतरीन बात है इस सारे में वो ये है कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप अपना केस जीत नहीं जाते. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. मुश्किल के वक्त में एक राहत की खबर आपके लिए है अटर्नी ओमर ख्वाजा. द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा इज हियर टू हेल्प यू. गिव देम अ कॉल फॉर फ्री कंसल्टेशन 469-300-5046 या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज अटर्नी ओमर OMAR attorneyomar.com. This is वो 90s का बॉलीवुड राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आज हम बात करने वाले हैं 90s की कुछ बहुत ही फेम. पिछले हफ्ते हमने बात की थी 90s के बैंकेबल स्टार्स हीरोज की. आज हम बात करेंगे 90s की बैंकेबल हीरोइंस की, जिनका मूवी में होना ऑलमोस्ट गारंटी होती थी एक हिट की.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms and accounting firms in the USG. Chahe aap individual ho, ya aap startup ho aapka, ya phir aap ek established business chalate ho. AG Fintechs offer karta hai aapko innovative financial solutions, jo ki aapki needs ke ird-gird tailor kiye jaate hain. From bookkeeping, payroll accounting and credit card, bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, as well as financial reporting. Aur iske saath, business advisory services bhi aapko provide karte hain AG Fintechs. They help keep your finances organized, compliant, as well as future ready. Trust kijiye unhein, make them your partner in building a strong financial future. Agar ye sab baat sunke aapke zehen mein koi bhi sawal aaya hai ya koi information aapko chahiye, to aap AG Fintechs ko call kar sakte hain. Their number is 469-942-9888. 469-942-9888 is that number. Or you can visit the website, which is AG Fintechs, F-I-N-T-A-X, agfintechs.com. और आप सुन रहे हैं वो 90s का बॉलीवुड. मैं हूं किरण आपके साथ. आज का शो है उन हीरोइंस के नाम जिन्होंने सिर्फ मूवीज नहीं, एक्टिंग नहीं, बल्कि 90s को एक कैरेक्टर दिया, ब्यूटीफुल बनाया, मेमोरीज दी हमें. वो मतलब उन्होंने वो मूवीज दी हमें जिनसे हमारा मेरा तो बॉलीवुड का जो रोमांस है मेरा और बॉलीवुड के दरमियान वो 90s में शुरू हुआ था. 90s का बॉलीवुड, माधुरी दीक्षित का डांस हो, काजोल की वो इनसेंट सी स्माइल हो, जूही चावला की बबली सी पर्सनैलिटी हो, करिश्मा कपूर का फैशन हो, विच वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट those days, Manisha Koirala ki intensity ho, ya phir Raveena Tandon ka glamour aur Urmila Matondkar ka rangila look. Decades jo hai wo matlab guzar gaye hain, lekin un cheezon ko, in heroine ki un baaton ko koi nahi bolta. Aur phir usi saal ya usi aap keh dijiye sadi mein aayi Miss World Aishwarya Rai, jinhone hame diya ek aur addition into the beautiful 90s ka Bollywood mein. She was another beautiful addition. To hum baat karenge aaj unhi ki filmon ki, in tamam heroines ki jinka maine aap se zikr kiya, unke songs, unka fashion, unki iconic jodiyan aur सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फेवरेट हीरोइन कौन थी, ये बात होगी. और इसी पे मैं सवाल भी लाऊंगी और एक गिव अवे भी लाऊंगी कि 90s में सबसे ज्यादा मजा आपको किस हीरोइन की फिल्म देख के आता था. बट नॉट राइट नाउ, वी विल ओपन द फ्लोर फॉर अ कॉन्वर्सेशन कॉर्नर इन अ बिट. सो तैयार हो जाइए, दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड.

जी हाँ, 90s के बॉलीवुड में तस्करा हो रहा है उन हीरोइंस का जिन्होंने बनाया 90s को हमारे लिए एब्सोल्युटली आइकॉनिक. और सबसे पहला जिक्र जिस एक्ट्रेस का होगा इस सीरीज में वो है जी माधुरी दीक्षित, द क्वीन. जैसे शाहरुख खान द किंग ऑफ बॉलीवुड थे 90s में स्पेशली, अभी भी हैं वो तो बहरहाल, लेकिन माधुरी दीक्षित वॉज कंसिडर्ड द क्वीन ऑफ बॉलीवुड. 90s की हीरोइन की बात हो और माधुरी का तस्करा ना हो, दैट इज नॉट हैपनिंग. और जी माधुरी वॉज ऑफकोर्स मोर देन एन एक्ट्रेस. जब वो स्क्रीन पे आती थी बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे यू नो बहुत सारी जुगनू चमचमा रहे हैं या टिमटिमा रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग कर रही हो, चाहे उनकी सीरियस एक्टिंग हो, चाहे उनकी नॉटी एक्टिंग हो, चाहे वो डांस परफॉर्मेंस दे रही हो. शी वॉज अ फिनोमिनन, हर स्माइल, हर एक्सप्रेशंस, हर डायलॉग डिलीवरी और स्पेशली उनके डांस, वो मतलब उस खासतौर पर उनकी जो डांसिंग स्किल्स हैं उन्होंने बना दिया उन्हें द बिगेस्ट स्टार ऑफ द डेकेड. कुछ 90s की इंपॉर्टेंट फिल्में आपको बताती हूँ माधुरी की, जिनमें इंक्लूडेड है दिल, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, याराना, दिल तो पागल है. और कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स भी हैं माधुरी के, जिनमें से एक दो आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगी. सो अगला गाना जब माधुरी की बात हो और इस आइकॉनिक नंबर की बात ना हो, दैट इज नॉट हैपनिंग. दिस इज खलनायक.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 9728772500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
2: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
3: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
6: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
7: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑबरी, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज़ एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
8: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
11: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
10: Fikar not. We have the perfect solution.
12: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
14: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
15: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with us this afternoon. 90s ka Bollywood sun rahe hain aap. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran mein. Aur kuch 90s ki leading ladies ki baat ho rahi hai. Madhuri se silsila shuru hua tha aur second number pe pahunch chuka hai Kajol pe. Magar usse pehle aapko batati chalun ji ke agar aap ek aise doctor aur aise health clinic ki talash mein hai jo aapki baat ko sune, jo doctor aapke साथ टाइम स्पेंड करें, जो आपके मसाइल सुने, जिससे हमें होता है हम जब अपने पीसीपी के पास जाते हैं तो भाई मसला तो सुन लो हमारा, पांच मिनट आए और डॉक्टर ने अपनी शक्ल दिखाई और चल दिए, वो वाला काम अगर आप नहीं चाहते तो देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हेयर फॉर यू. 30 मिनट की अपॉइंटमेंट आपके लिए स्केड्यूल की जाती है बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हु यू आर, व्हाट योर हेल्थ कंसर्न्स आर, एंड 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स फॉर अस टू कंप्लीट आवर एनुअल फिजिकल्स, एंजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, vitamin B12 deficiency testing and much more. Jo kuch bhi aapke health ke concerns hain, wo Passion Health Primary Care pe nazarandaz bilkul nahi kiye jayenge. They will be taken care of. So aap aaj hi unhe call kijiye, apni appointment schedule kijiye. Be passionate about your health just as much as they are passionate about your health. That number is 214-888-6259. This is the number to book your appointment. 214-888-6259. Acha ji, to ab baat karte hain Madhuri ki. Humne baat ki jo 90s ki wo bankable star thi ya wo actress thi jinhone hame kuch behtareen filme di. She was the queen of 90s, and this girl jiski ab baat ho rahi hai, she just changed the definition of romance. Ye hai ji traditional heroine se thodi si different. Na wo hamesha perfectly made up nazar aati thi, na unke characters hamesha perfect heroine jaise hote the. She was loud, she was emotional, she was funny, she was unpredictable. Abhi bhi wo kabhi interview dete hue nazar aati hain, to she is all of these things jo maine aapko batai. Aur sabse important baat in sab mein ye thi ki she was totally real. She was the leading lady of Bollywood, Kajol. Kajol ki baat ho rahi hai. Kajol ne 90s mein Bollywood heroine ki ek different image hame di. Unki sabse zyada strength thi unki natural acting. Wo jab screen par hasti to lagta genuinely hans rahi hai. Jab gussa karti to mujhe bhi gussa aata hai jis pe wo gussa kar rahi hai us pe. Aur jab roti thi to audience completely emotional ho jati thi. Kajol ke characters mein ek girl next door quality thi. Ek ऐसी लड़की जिसे मैं और आप अपने आसपास देख सकते हैं, हमें महसूस होती है ऐसी लड़की जैसे, मतलब बिल्कुल गर्ल नेक्स्ट डोर. तो कभी वो बबली और टॉकेटिव थी, कभी इमोशनल थी, कभी फियर्सली इंडिपेंडेंट थी, और कभी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल. दैट इज काजोल, दी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लीडिंग लेडीज ऑफ द 90s.

90s का डेकेड जो था वो काजोल के लिए बहुत ही फिनोमिनल था, चाहे बाजीगर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश की उन्होंने, खास तौर पे शाहरुख खान के साथ एक बड़ी ही यूनिक और अनयूजुअल रोमांटिक पेयरिंग क्रिएट की विद बाजीगर, और फिर आई बहुत सारी बैक टू बैक हिट्स जैसे कि उधार की जिंदगी, करण अर्जुन, हलचल, गुप्त, प्यार किया तो डरना क्या, बल्कि गुप्त में तो शी वॉज आउट राइटली द विलन, एंड प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है, और एक और फिल्म जिसने कंप्लीटली चेंज कर दिया हमारा परसेप्शन रोमांस को लेके, एंड दैट वाज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. सो ये 90s की जर्नी की ही, मिड 90s में काजोल की दिलवाले दुल्हनिया रिलीज हुई, जिसमें जिसने ना सिर्फ काजोल को बना दिया एक सुपरस्टार, बल्कि इट मेड हर सिमरन, दी सिमरन ऑफ बॉलीवुड. सिमरन एक ट्रेडिशनल देसी फैमिली की लड़की थी, अपने ड्रीम्स थे, अपने इमोशंस थे, अपनी चॉइसेस थी, और जब राज उनकी लाइफ में आ गए तो बॉलीवुड को मिली एक लेजेंडरी लव स्टोरी, एंड दैट गेव अस ऑफ कोर्स द मोस्ट आइकॉनिक पेयरिंग, शाहरुख खान एंड काजोल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक जोड़ीज ऑफ बॉलीवुड एवर. इन दोनों की केमिस्ट्री ने मैजिकल रोमांस हमें दिखाया. नोकझोंक हो या फाइट्स हो या स्माइल्स हो या लिटिल लिटिल मोमेंट्स हो, सिर्फ दोस्ती हो, दोस्ती की एक्सप्रेशन जो उन्होंने दी, चाहे वो दिलवाले से दिया, चाहे वो कुछ कुछ होता है से दिया, इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल. और फिर जब राज ने सिमरन को कहा पलट, तो सिमरन ही नहीं, मुझे लगता है सिमरन के साथ

और अगर आज आपका बिल्कुल खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा तो वी आर ऑल इन द सेम बोट, डोंट वरी अबाउट इट. खाना तो नहीं पकाना लेकिन घर जैसा खाना खाने का तो हर वक्त इंसान का दिल करता है. तो आप लाइए आज का खाना, या जाके खाइए या घर ले आइए. तंदूरी फ्लेम गार्डन में लोकेटेड हैं जी, और तमाम आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि तंदूरी प्लाटर्स, करीज, कबाब्स, नान्स, हॉट फ्रेश नान, सब कुछ आपको मिलेगा तंदूरी फ्लेम पे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल घर जैसे फ्लेवर्स के साथ. होम स्टाइल पंच इज वॉट तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड इज नोन फॉर. सो डू विजिट देम एंड चेक देम आउट, चेक आउट देयर मेन्यू एज वेल. तो ये हुई आपके लिए ये बात. और अब बात करते हैं एक और हीरोइन की, जिन्होंने 90s के दौर में कुछ ऐसी फिल्में हमें दी कि शी वॉज, वो जैसे हम कह रहे हैं ना, द बैंकेबल स्टार्स ऑफ द हीरोइंस ऑफ 90. सो शी वॉज डेफिनेटली वन ऑफ दोज हीरोइंस. और इनका तो नाम जैसे मैं जिक्र भी करती हूँ तो ऑटोमेटिकली चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है. द बबलीएस्ट, द नॉटीएस्ट, द क्यूटेस्ट, जूही चावला. जूही चावला ने बॉलीवुड को एक बड़ा स्पेशल कॉम्बिनेशन दिया, इनोसेंस, कॉमेडी, चार्म, और साथ ही साथ वो अनफॉरगेटेबल स्माइल जिसे कोई नहीं भूल सकता. शी फेल्ट एब्सोल्युटली नेचुरल, रिलेटेबल, और वाकई एफर्टलेसली फनी थी वो. उनको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी हंसाने के लिए अपनी ऑडियंस को. इट वॉज जस्ट दैट नॉटीनेस जो उनके चेहरे पर आती थी और खुद ब खुद ऑडियंस उनके साथ मुस्कुराने लगती थी. कभी बबली, कभी मिस्चीवियस, कभी इमोशनल. और कॉमेडी की टाइमिंग जूही चावला की वॉज एब्सोल्युटली बैंग ऑन. तो ख़ासतौर पर जो उनकी जोड़ी जो है वो दो लोगों के साथ, हीरोज के साथ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, एक आमिर खान ऑफकोर्स और एक शाहरुख खान ऑफकोर्स. शाहरुख खान के साथ तो खैर अभी भी उनका कोई ना कोई आप कह लीजिए कि बिजनेस वेंचर चलता रहता है. शी इज़ नेवर लेफ्ट शाहरुख साइड एंड शाहरुख हैज़ नेवर लेफ्ट हर्स. दे आर रियली गुड बडीज एज वेल, बट दे हैव गिवन अस सम ब्यूटिफुल फिल्म्स. और जूही चावला और शाहरुख खान के ऊपर पिक्चराइज्ड फिल्म डर का वो गाना जो मेरी पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ऑफकोर्स, उसमें मेरा नाम जो है, जब आपका पसंद का हीरो आपकी पसंद के नाम के ऊपर गाना गाए तो फिर ऐसा तो होता ही है. बट जूही चावला was absolutely beautiful in Dar, in the role of Kiran.

0: कयामत से कयामत तक डर राजू बन गया जेंटलमैन हम हेरा ही प्यार के यस बॉस इश्क डुप्लीकेट एक से बढ़कर एक फिल्में जूही चावला के ऊपर रिलीज हुई और 90s की रोमांटिक कॉमेडी क्वीन उन्हें बुलाया जाने लगा. शी वॉज डेफिनेटली वो जो रोमांटिक कॉमेडी थी उसमें मेरा नहीं ख्याल कि जूही चावला को कोई बीट करता था. ऑल्दो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन अक्सर चलती रहती थी कि जूही चावला की स्माइल का मुकाबला और कौन कर सकता है. तो अक्सर डिस्कशन चलती थी कि माधुरी दीक्षित का एक्सप्रेशन इज द ओनली थिंग दैट कैन यू नो कंपीट विद दैट. एक तरफ माधुरी की किलर स्माइल और एक्सप्रेसिव आईज तो दूसरी तरफ जूही चावला की सिंपल इनोसेंट गर्ल नेक्स्ट डोर वाली स्माइल. माधुरी का को देख के लगता था वाओ और जूही चावला को देख के वाकई बंदा कहता था ओह दैट्स सो स्वीट. तो ये दोनों माधुरी और जूही एक दूसरे को कंपीट करते रहे. दे बोथ वर हम एज एन ऑडियंस दे वर अ ट्रीट टू आवर आईज.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ.
2: तो कैरेट लेन चलो. दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस.
1: सीरियसली कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस. कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: होचो
5: होको
4: होचो
5: होको
4: होचो
5: इट्स होको.
6: अरे बस भी करो यार.
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
0: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
3: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा.
0: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
4: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
0: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 120 और कस्टर जंक्शन.
5: ये तारा वो तारा हर तारा.
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funisia Radio.

जी हाँ, दैट सॉन्ग जूही चावला एंड शाहरुख खान खास तौर पे सफी के लिए प्ले किया था मैंने. और अब आगे बढ़ते हैं, सुन रहे हैं आप वो 90s का बॉलीवुड और 90s की कुछ आउटस्टैंडिंग हीरोइंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने 90s के एरा को बनाया हमारे लिए और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग. जैसे मैं कहती हूँ कि 90s के बॉलीवुड से वॉज द टाइम वेन माई रोमांस विद बॉलीवुड स्टार्टेड. सो दिस इज माई एरा, माई लव फॉर बॉलीवुड, जो आपके साथ आज हम शेयर कर रहे हैं. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि अगर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हैं, यू लुकिंग टू बाई योर ड्रीम हाउस एंड यू आर प्लानिंग अराउंड इट, तो ड्रीम होम मॉर्गेज को इस प्लानिंग का हिस्सा बनाइए. बिकॉज 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज हेल्प कर रही है फैमिलीज को टू अचीव देयर ड्रीम ऑफ होम ओनरशिप. और आपके लिए आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए दे मेक पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर यू. स्मूथ और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस है, बिल्कुल कोई टेंशन बिल्कुल नहीं होती विद ड्रीम होम मॉर्गेज. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स. देयर एक्सट्रीम एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग द राइट लोन ऑप्शंस दैट आर टेलर्ड अराउंड योर नीड्स. तो वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम, यू आर अपग्रेडिंग, यू आर रीफाइनेंसिंग, यू हैव सम कमर्शियल नीड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ड्रीम होम मॉर्गेज इज हियर टू हेल्प यू. कॉल देम 972-245-5626. 972-245-5626 इज द नंबर, या फिर उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए विच इज dreamhomemortgage.com. dreamhomemortgage.com is where you can log on. अच्छा जी, बात हुई हमने काजोल की, बात की माधुरी की, बात की और जूही चावला की, बात की एक और 90s के बॉलीवुड की हीरोइन जो प्रैक्टिकली हर जगह नजर आती थी, हर सांचे में जिसे आप कह लीजिए ढल जाती थी, फिट हो जाती थी. शी वॉज द गर्ल नेक्स्ट डोर, शी वॉज द ग्लैमरस हीरोइन, शी वॉज द डांसर, शी वॉज द कॉमेडी क्वीन, शी वॉज द रोमांटिक लीड, शी वॉज करिश्मा कपूर. करिश्मा कपूर के लिए 90s सिर्फ एक डेकेड नहीं था, इट वॉज हर एरा, इट वॉज करिश्मा एरा. कपूर फैमिली का सरनेम तो उनके साथ पहले से मौजूद था, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हाई थी. लेकिन करिश्मा ने सिर्फ फैमिली नेम पर डिपेंड नहीं किया, बहुत मेहनत करी, विच वी कुड सी इन हर रोल्स, एंड शी इवॉल्व्ड एंड स्लोली क्रिएटेड हर ओन फैन फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम द कपूर आइडेंटिटी. इनिशियली उनकी एक्टिंग को भी चैलेंज किया जाता था, क्रिटिकली उनको देखा जाता था कि पता नहीं वुड शी बी एबल टू मेक इट इन बॉलीवुड. बट बाय द मिड 90s करिश्मा हैड बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड कमर्शियल हीरोइंस. ग्लैमर हो, वर्सिटैलिटी हो, यू नो कॉमेडी हो, जैसे कि राजा बाबू में थी, कुली नंबर वन में गोविंदा के साथ जो उनकी इन्फेक्शियस केमिस्ट्री थी, जुड़वा में फुल ऑन मसाला एंटरटेनमेंट हमें करिश्मा ने दिया, हीरो नंबर वन में कॉमेडी और रोमांस हमने देखा, और फिर आई राजा हिंदुस्तानी, और राजा हिंदुस्तानी में हमने करिश्मा का एक डिफरेंट रूप देखा, एन इमोशनल मैच्योर साइड. और फिर ये गाना है यार राजा हिंदुस्तानी में, विच बिकेम एन आइकॉन. 90s का दौर और परदेसी परदेसी का जिक्र नहीं, ये नहीं हो सकता. करिश्मा कपूर के गानों की लिस्ट में चंद एक गाने आर just you cannot ignore them, and this is one of them, that is Raja Hindustani's Pardesi Pardesi. Ye to ek emotion tha 90s ka.

जी हाँ, राजा हिंदुस्तानी से सुन रहे थे आप ये गाना, करिश्मा कपूर, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ 90s, उनकी बात हो रही है. बहुत सारी हीरोइंस हैं जी. थैंक यू फॉर योर कॉल जिया. और आगे आगे जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे मनीषा कोइराला का जिक्र भी होगा और साथ ही साथ रवीना टंडन का जिक्र भी होगा और इस तरह की बहुत सारे हम कोशिश करेंगे, अगर मैं इस एपिसोड में नहीं तो अगले एपिसोड में जरूर उन तमाम लीडिंग लेडीज का जिक्र करने वाली हूँ. अच्छा जी, ये जो राजा हिंदुस्तानी थी, इस फिल्म के लिए करिश्मा ने जीता फिल्म फेयर अवार्ड और फिर आई फिल्म दिल तो पागल है. दिल तो पागल है के लिए नेशनल अवार्ड जीता करिश्मा कपूर ने और फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. करिश्मा कपूर एक फैशन आइकॉन थी. आप कह लीजिए कि यू नो, पिंक लिपस्टिक वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ समबडी वेयरिंग दैट पिंक लिपस्टिक. जब पहले हीरोइंस इस तरह की कलर नहीं लगाती थी, बट करिश्मा मेड इट एन आइकॉन, पिंक लिपस्टिक, वो जो यू नो चमकती हुई पिंक होती है, ब्लू जीन्स, क्रॉप टॉप्स, कलरफुल ड्रेसेस, मिनी स्कर्ट्स, हेयर एक्सेसरीज, स्टेटमेंट इयररिंग्स जो करिश्मा कपूर पहना करती थी, ये वो 90s के आइकॉनिक चीज़ें थी जो करिश्मा से डिफाइन होती थी. इवन द हेयर स्टाइल्स जो करिश्मा के हमें नजर आते थे वो बिल्कुल डिफरेंट होते थे. तो मतलब ऑल इन ऑल आप ये कह लीजिए कि 90s के दौर में करिश्मा जो पहनती थी वो यंग लड़कियां उसे जरूर कॉपी किया करती थी. शी मेड कैजुअल फैशन लुक सो ग्लैमरस एंड मतलब देयर वाज समथिंग अबाउट करिश्मा दैट वाज जस्ट सो ग्लैमरस. कुछ भी पहना दो ने इट वुड बिकम ग्लैमरस और वही ग्लैमरस लुक जो है वो गर्ल्स, लेडीज, यंग गर्ल्स वुड यूज टू associate with Karishma. तो आप जब हम वापस आएंगे, ये गाना एक और मैं Karishma का प्ले करने लगी हूँ क्योंकि दिल तो पागल है की बात हुई है और ये गाना प्ले ना हो ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज ले गई ले गई. इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो नेक्स्ट हीरोइन विच वॉज अनदर ब्यूटिफुल इनोसेंस. दिस गर्ल वेन आई सॉ हर फर्स्ट टाइम Innocence is what I remember. But that after this song. उससे पहले मैं आपको बता नहीं अच्छा चलिए पहले गाना सुनते हैं और उसके बाद करेंगे अगली बात.

जी हाँ, दिल ले गई सुन रहे थे आप, दिल तो पागल है से, जिसमें करिश्मा ने बिल्कुल एक अलग ही रोल किया और सपोर्टिंग रोल किया और बहुत ही कमाल का रोल किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि अगर आपको कोई ओकेजन आपका आ रहा है, आपने ज्वेलरी खरीदनी है, आपको गोल्ड या डायमंड या फिर ब्राइडल कलेक्शन चाहिए, तो फिर PNJ Jewels is now available in Frisco. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara, PNJ is a name that is trusted by generations. Lekar aate hain aapke liye jewelry excellence or timeless Indian craftsmanship. Frisco mein located hain on Main Street. Zaroor jaiye, discover kijiye PNJ Jewels aur unke behtareen styles ko, jo aapko definitely, definitely achhe lagne wale hain. Acha ji, agli हीरोइन जो 90s के, क्योंकि हम ये 90s का बॉलीवुड चल रहा है और आज की हमारी थीम है द 90s की हीरोइंस, जिन्होंने 90s को बनाया बड़ा ही स्पेशल मेरे और आपके लिए। पिछले हफ्ते हमने हीरोज की बात की थी, तो जी अब ये एक ऐसी हीरोइन है जिनके साथ ना सिर्फ हीरोइन का नाम आता है बल्कि genuinely she is a superb actress, और ये हैं मनीषा कोइराला। 90s के बॉलीवुड में मनीषा वॉज totally different. She had the beauty, she had the glamour of a traditional Bollywood heroine, of course, but what really made her stand out was her acting ability and emotional depth. मनीषा के एक्सप्रेशंस में एक इंटेंसिटी थी जो हमने देखा दिल से मूवी में, दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। आंखों में एक इमोशन था जो वो कन्वे बहुत आसानी से करना जानती थी, और साइलेंस में भी एक्टिंग करना मनीषा बहुत खूब जानती थी। और रोमांटिक सीन से लेकर हार्ट ब्रेक हो या ट्रेजेडी हो, हर चीज में ऑडियंस मनीषा के साथ कनेक्ट करती थी, चाहे वो मूवी हो सौदागर या 1942 अ लव स्टोरी, या फिर बॉम्बे, या खामोशी, या दिल से, या फिर मन।

0: hair, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में? सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो.
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
6: बेटा, 95% आए?
7: हाँ मम्मी.
6: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
2: मेरा?
6: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
8: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
9: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
11: जीनी, हुकम मेरी आका।
12: हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
11: मिराज लाउंज, चलिए मेरी आका। लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
12: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
11: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
12: और एंटरटेनमेंट,
11: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है।
12: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
11: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
13: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
14: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
15: कितने आदमी थे?
16: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनेशिया सुनता है।

चाहे वो 90s के बॉलीवुड की ईलू ईलू हो या सौदागर सौदागर हो या फिर किरण हो, कुछ ऐसे आइकॉनिक गाने और डायलॉग्स हमें 90s में मिले जिन्हें हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. वी आर सेलिब्रेटिंग द लीडिंग लेडीज ऑफ 90s टुडे. और बात हो रही थी मनीषा कोइराला की. तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी मेरे पास 5 से 7 लीडिंग लेडीज और हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन वक्त अब नहीं है. 5 बजे मेरा शो खत्म हो जाएगा और चूंकि अभी मैंने आपके लिए कुछ गिव अवेज भी लाने हैं, कुछ ट्रैफिक वेदर बहुत कुछ देना है. सो ये 5 हीरोइंस जिनकी आज हमने बात की, माधुरी दीक्षित, काजोल, जूही चावला, करिश्मा कपूर और मनीषा कोइराला. नेक्स्ट वीक व्हेन वी विल ब्रिंग वो 90s का बॉलीवुड, वी विल ब्रिंग द लीडिंग लेडीज ऑफ 90s एपिसोड 2 और उसके अंदर वो 5 से 7 और मजीद हीरोइंस जिन्होंने 90s में हमें कुछ कमाल की मूवियां और गाने दिए, आपसे जरूर जिक्र करूंगी उनका. सो लेट्स वेट फॉर द सेकंड एपिसोड बिफोर यू स्टार्ट कॉलिंग कि आपने जूही, आपने रवीना टंडन की बात नहीं करी या आपने शिल्पा शेट्टी की बात नहीं करी या उर्मिला की बात नहीं करी या फिर तब्बू की बात नहीं, सब होगी लेकिन एपिसोड 2 में. फिलहाल हम वापस आते हैं मनीषा कोइराला पे सौदागर के साथ. शी केम विद अ बैंग, एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इनोसेंट चेहरा जो हमें सौदागर में नजर आया और उसके बाद आई उनकी मूवी 1942 अ लव स्टोरी एंड Everything faded. Her innocent, जितना वो सौदागर में प्यारी लगी थी उससे कोई 100 times ज्यादा प्यारी वो लगी हमें 1942 a love story में. Her chemistry with Anil Kapoor was rocking. Her performance in the movie was rocking as a cute सी लड़की to a woman who is torn between love and country and relationships. It was absolutely beautiful. और ये जो गाना, वैसे जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि ये गाना उन्होंने माधुरी दीक्षित के लिए लिखा था अपने जहन में रख के, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना अगर किसी के ऊपर फिट हो सकता था तो वो सिर्फ मनीषा कोइराला थी. जिस तरह इस गाने से बीच में जब उनकी लुक्स दिखाते हैं और गाना चल रहा होता है, एंड एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल फिट ऑन मनीषा. दिस इज एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा.

और अब बात आ चला है आपके लिए एक गिव अवे लाने का. दैट इज ब्रॉट टू यू बाय चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. दिस इज योर चांस ऑफ विनिंग $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चंडीगढ़ बाइट्स पे खाना तो जबरदस्त मिलता ही है, लेकिन उनका लंच स्पेशल इज रियली पॉपुलर. स्पेशल थाली आपके लिए लेकर आते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग एवरी डे. तो जरूर आप उनका लंच स्पेशल ट्राई कीजिए. और वैसे उनका मेन्यू इज ऑलवेज देयर. Visit ChandigarhBites.com for more details. Check out what they are offering you and enjoy Chandigarh Bites, located off McDermott Drive in Allen. और अब ये $10 ऑफ अगर आपने जीतना है ऑन योर $50 बिल और मोर, तो आप मुझे बताइए. आज हमने बात करी 90s की फाइव लीडिंग लेडीज की, माधुरी, काजोल, जूही चावला, करिश्मा कपूर और मनीषा कोइराला. आपको मुझे बताना है 972-235-5555 पे कॉल करके कि इन पांच लीडिंग लेडीज में से आपकी फेवरेट कौन थी और कौन सी मूवी उनकी आपको लगी थी 90s की. देखिए 90s का दौर हो रहा है तो 90s का ही हम रखेंगे. 90s की कौन सी मूवी आपकी पसंद की लीडिंग लेडी थी इन पांच में से. बाकी तो बहुत सारी हैं लेकिन हम इन पांच की बात करेंगे. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. सो पिक अप दैट फोन एंड गिव मी अ कॉल.

0: Pan Asia Radio. You are live on air. What is your name?
1: Jatin.
0: Ji Jatin, bataiye, which one was your favorite and what movie?
1: Kajol.
0: Perfect. Aur kaun si movie aapko unki bahut achhi lagi? I know it's a difficult question, but what do you think?
1: बहुत सारी मूवीज हैं अच्छी, तो एक पिक करना तो डिफिकल्ट है.
0: राइट.
1: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाज अ फेवरेट मूवी.
0: बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच जतिन फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. Fun Asia Radio, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज श्वेता.
0: श्वेता जी, श्वेता बताइए.
2: माधुरी दीक्षित.
0: ओके, एंड व्हिच वन ऑफ द मूवी दैट यू थिंक यू रियली रियली लव?
2: I like Hum Aap Kya Hain Kaun. She was looking very pretty and obviously her dance.
0: Meri bhi unki favorite movie Hum Aap Kya Hain Kaun hai. So there we are. Thank you so much, Shweta. Sunte rahiye. I'm going to announce the winner right after this. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
3: Hey, hi, this is Priyanka.
0: Ji, Priyanka, bataiye.
3: Ji, mujhe Madhuri Dixit bahut achhi lagti hai aur unki Sajan movie.
0: साजन, राइट. ये थोड़ी डिफरेंट आपने मूवी बताई. परफेक्ट. अच्छा बताइए, आपको साजन क्यों अच्छी लगती है?
3: कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, गाने बहुत अच्छे थे.
0: And her performance, the dance performances were amazing, right? Okay, thank you, Priyanka. Sunte rahiye. I'm going to announce the winner right after this. Fun Asia Radio, you're live on air. What is your name?
4: Hey, good evening. My name is Yashika.
0: Ji, Yashika, बताइए.
4: So my favorite leading lady was Kajol, and the movie I really liked is Kuch Kuch Hota Hai. I watched it at least 20 times.
0: Join the club. Mera khayal hai Dilwale Dulhaniya Kuch Kuch Hota Hai, Hum Aapke Hain Kaun, hum sab ne 20-20 baar dekh rakhi hai.
4: Yes, hum sab wahi atke hue hain abhi bhi.
0: Sahi baat hai. I just can't find that kind of romance anymore in the movies. Although milta hai, lekin wo wala romance nahi milta jo un movies mein mila karta tha.
4: Yeah, that's true. Like Aashiqui 2 was like good. Aashiqui 2 was like,
0: सुनते रहिए यशिका. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, आप सबकी अपनी अपनी पसंद है. दिस किसी को साजन पसंद है, किसी को दिलवाले दुल्हनिया, किसी को हम आपके हैं कौन, और किसी को कुछ कुछ होता है. Fun Asia Radio, you're live on air. What is your name?
5: पूनम.
0: जी पूनम बताइए.
5: मनीषा कोइराला एंड माय अल्टीमेट मूवी इज दैट 1942 लव स्टोरी. शी इज जस्ट टू क्यूट इन दैट मूवी.
0: Absolutely. Achha, cute ke saath, there was a strange kind of innocence on her face in that movie, which was just breathtaking.
5: yes, absolutely. You don't find that in today's time, that kind of beauty. Absolutely. The innocence she has, yes.
0: Absolutely. Poonam, please sunte rahiye. I'm going to announce the winner right after this. And okay. I'll ask you to call back if you are the winner. Please stay tuned. All right, G, thank you so much for participating. Abhi ek do phone calls aur lungi and then we'll head on to a song. Fun Asia Radio, you are live on air. Please apna naam bataiye.
6: Hi, Miss Prohelika.
0: Sohelika?
6: Prohelika.
0: Prohelika, G bataiye.
6: मेरे फेवरेट थे माधुरी दीक्षित और मुझे पसंद था उनका दिल तो पागल है और हम आपके हैं कौन.
0: Absolutely. दो जबरदस्त मूवीज का आपने नाम बताया है. थैंक यू सो मच प्रियंका. अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक माधुरी का गाना जो आपको उस जमाने में बहुत अच्छा लगता था वो कौन सा था?
6: दीदी तेरा देवर दीवाना.
0: ठीक है जी, दीदी तेरा देवर. ठीक है, थैंक यू सो मच प्रियंका. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट, दैट वाज प्रोबब्ली ऑल द टाइम वी हैड फॉर द कॉन्टेस्ट. विद दिस लास्ट कॉल वी आर गोइंग टू रैप अप द सेगमेंट. Fun Asia Radio, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
7: हाय, आई एम प्रेरणा मेहता.
0: जी प्रेरणा बताइए.
7: मुझे एक्चुअली मनीषा कोइराला ज्यादा अच्छी लगती है और उसका वो मूवी है ना सलमान खान के साथ खामोश.
0: जी खामोशी. राइट,
7: खामोशी वो मुझे बहुत पसंद है. उसका वो गाना है बाहों के दरमियां.
0: जी जी बिल्कुल, मैंने अभी प्ले किया था उसको अराउंड 10 से 15 मिनट पहले, क्योंकि वो गाना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है. थैंक यू प्रेरणा फॉर योर कॉल. प्लीज सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर राइट आफ्टर दिस. अच्छा जी, दैट वाज ऑल द टाइम वी हैड फॉर द कॉन्टेस्ट. थैंक यू सो मच. मैं ये गाना प्ले कर रही हूँ और वापस आके बताऊंगी मैथ के फॉर्मूले में, जरा नंबर डाल लूँ आपने जिस सीक्वेंस में कॉल किया है. विनर की अनाउंसमेंट राइट आफ्टर दिस.

जी हाँ जी, विनर अनाउंस करने का टाइम आ गया है. कुछ ऑफ एयर कॉल्स भी आई जिन्हें मैंने लिया और सबने अपनी अपनी इनपुट दी. रिचा ने बताया हमें कि उनको माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, स्पेशली उनकी मूवी बेटा, विच वॉज एन एब्सोल्युटली विमेन सेंट्रिक मूवी. माधुरी और अरुणा ईरानी उस फिल्म में ब्रिलियंट रोल्स में मौजूद थी. साथ ही साथ गणेश फॉर लाइकिंग जूही चावला, स्पेशली कयामत से क्यामत तक. आमिर खान से जो केमिस्ट्री जूही की शुरू हुई तो वो फिर शाहरुख खान के साथ आगे बढ़ी और डर में पहुंची, एंड दीज आर हिज फेवरेट मूवीज. अच्छा जी, अब मैं आपको विनर अनाउंस कर देती हूँ. हमारी जो आज की लकी विनर है, मैंने मैथ का फॉर्मूला, वी हैड अबाउट 10, 15, 12 कॉल्स और वो मैथ का फॉर्मूला जब हमने अंदर डाला तो द 8th कॉलर ऑफ द डे विच वॉज रिचा गुप्ता, शी इज द विनर. नंबर 8 इज द विनर. रिचा कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. 2 दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर चंडीगढ़ बाइट्स पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू इन एलन, एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया. फनीजे इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. आपकी पार्टिसिपेशन इज वॉट मैटर्स द मोस्ट to me. Thank you so much.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
0: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry, men's and kids wear.
4: Wait, itna sab aur price?
0: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331 99.
7: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
8: Hey, tumne kabhi insurance liya?
9: Liya.
8: Kabhi policy samajh bhi aaya?
9: Nahi aaya.
8: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
1: Visit www.sanadainc.com today.
10: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
0: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
13: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
14: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

You're tuned into your afternoon drive time with Sunheri Kiran right here on 104.9 FM Fan Asia Radio. आधा घंटा और यानी कि 5 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद हूँ. और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें चलें जी, if your child is in third to through fifth grade, then Next Gen Speakers Academy can help them build the communication and leadership skills जो कि उनके साथ चलेंगी for a lifetime. Created by experienced coaches Sunhi Simon Santiago and Audra Langston. ये वो लोग हैं जिन्होंने मेंटर किया है डिबेट चैंपियंस को, वैलेडिक्टोरियंस, आईवी लीग ग्रेजुएट्स. एंड दिस ऑनलाइन प्रोग्राम दैट दे आर ऑफरिंग, इट इज डिजाइन टू हेल्प यंग माइंड्स ग्रो इनटू कॉन्फिडेंट लीडर्स. अगर आप इनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे लॉग ऑन कीजिए. लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर यू, दैट इज नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी डॉट कॉम. एक बार फिर नेक्स्ट जेन speakersacademy.com or you can give them a call for your questions 214-724-2867 is that number. So give your child the confidence to lead tomorrow starting today with Next Gen Speakers Academy. और इसी के साथ इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द वेदर अपडेट. आज है जी थर्सडे ऑगस्ट 13th, 4:40 PM इन द स्टूडियो. और इस वक्त सिटी ऑफ मिकिनी में है 101 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 104. दिन रहा सनी, हॉट एंड हाइज अराउंड 101, जबकि हीट इंडेक्स वैल्यूज अप टू 108. शाम रहेगी क्लियर, लोज इन द अपर 70s. आज का पोलन काउंट इज 6.4 विच इज मीडियम. ग्रास एंड एल्म इज व्हाट इज बॉदरिंग, जबकि यूवी इंडेक्स इज 10 विच इज ऑफकोर्स एक्सट्रीमली हाई. सो अगर आपका शाम में कुछ बाहर करने का प्लान है तो अपनी सनस्क्रीन्स हैंडी रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सनराइज आज का हुआ 6:47 AM, जबकि आज का सनसेट होगा 8:14 PM.

Come celebrate India's 80th Independence Day at IANT Anand Bazaar 2026. This is happening on Saturday, August the 15th, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco. Aur bilkul ji garmi ki tension mat le, it is a completely indoors event. Aur best part ye hai ki it is absolutely free. Koi ticket nahi khareedna aapko. Come and enjoy authentic flavors. Grand Parade hoga, cultural performances honge, live music hoga, aur shopping agar aapko pasand hai, to shopping ke bahut sare mauke aapko yahan pe milne wale hain. Bring your family, come with your friends and enjoy and be a part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration. This is IANT's Anand Bazaar 2026. Aur isi ke saath, आपको देने लगी हूँ करेंसी अपडेट के US डॉलर आज कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो इस वक्त रेट कर रहा है 0.86 पे. ब्रिटिश पाउंड 0.74 पे स्टैंड कर रहा है जबकि इंडियन रुपी 95.41 पे ट्रेड कर रहा है. कैनेडियन डॉलर 1.39 जबकि पाकिस्तानी रुपी 277.76 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. नेपाली रुपी 152.74 पे स्टैंड कर रहा है जबकि बांग्लादेशी टका 122.80 बांग्लादेशी टका इज ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. दैट्स योर करेंसी अपडेट. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो आई विल टेल यू द गोल्ड प्राइस अपडेट यानी कि सोने का आज क्या भाव है.

0: और जी रक्षाबंधन आ रहा है और इस रक्षाबंधन आपके लिए बहुत स्पेशल तैयारी की है फनएशिया ने. फनएशिया एंड चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट आपके लिए लेकर आए हैं एक्साइटिंग डेली प्राइजेस जैसे कि डाइनिंग एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टे और साथ ही साथ ग्रैंड प्राइज विच इज अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट लोकेटेड इन ड्यूरेंट. तो आपको क्या करना है इस इन प्राइज को प्राइजेस को जीतने के लिए, आपको बतानी है अपनी मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग, ब्रदर और सिस्टर, और आपको इसका एक मिनट का वॉइस नोट बनाना है और आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे. नंबर नोट कीजिए आराम से, अपना मेमोरी सोचिए, अपना नोट बनाइए, वॉइस नोट, और नंबर है 2148377147. एक बार फिर 2148377147 पे अपनी इस मेमोरी को व्हाट्सएप कीजिए और वॉइस नोट को, और हिस्सा बनिए इस यू नो डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज के लिए. कंप्लीट डिटेल्स आपको इस कॉन्टेस्ट की मिल जाएंगी हमारे फनएशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पे. अगर आपने अब तक हमें फॉलो करना शुरू नहीं किया तो इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट फॉलोइंग सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग इंपॉर्टेंट. चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट इज वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड. यू हैव टू बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. Terms and conditions apply and please play responsibly. With that, it is time to say my byes to you. I will see you tomorrow. Bacha Party, thank God it's Friday tomorrow. We are back to Kids Junction. I will be taking your calls live once again, 2:30 p.m. to 5 p.m. I will be there. Stay tuned and stay safe.
1: This is the FunAsia Network. You are listening to FunAsia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by FunAsia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Yaar, modern Manga Sutra dhoonte dhoonte thak gayi hoon.
10: To Carrot Lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern Manga Sutras.
9: Seriously? Kaisa collection hai?
10: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
11: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना

0: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभाल लेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
5: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
6: Tarikh par tarikh.
7: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
5: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
9: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
8: क्यों?
9: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
8: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down? So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
14: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
15: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
16: बीबीसी न्यूज विद सू मॉन्टगोमरी। The Democratic Republic of Congo has detected Ebola in the 6th province as the country's outbreak continues to spread rapidly. Health officials say a man who travelled from an affected area died and later tested positive for the virus. From Kinshasa, Emery Makumeno.
17: A patient has died in Buta, the capital of the Bauele province, neighbouring the Central African Republic. This brings the number of affected provinces to 6, nearly 12 weeks into the response, with the outbreak spreading westwards. The World Health Organization says it's moving faster than any previous Ebola outbreak. The Africa CDC warns contact tracing is nowhere near good enough. Latest figures show more than 4,000 cases and more than 2,000 deaths.

0: वंडरफुल ट्रैक अनजाना अनजानी कहते हैं जी, अगर तुम्हारे अरमानों पे कोई पानी फेर दे तो क्या हुआ, पानी इकट्ठा करो, उससे अपना मूड हो, फ्रेश हो जाओ और लुक एट लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ब्रो. राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. दिस इज फनीशा.
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. लर्न हाउ अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू परस्यू योर फाइनेंशियल गोल्स. विजिट MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Dad, property papers कहाँ हैं?
5: Laptop में.
4: Investment?
5: Google Drive.
4: Insurance? Passwords?
5: बेटा don't worry, मुझे सब पता है.
4: Dad, वही तो problem है, सिर्फ आपको पता है.
6: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
6: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: होचो
11: होको
10: होचो
11: होको
10: होचो
11: इट्स होको.
12: अरे बस भी करो यार.
11: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
12: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करी, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
13: अरे यार, घर मिल गया.
14: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
9: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
14: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
9: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
15: हेलो, मेरे रिलेटिव आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
16: Fear not, we have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday, Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
17: Aji sunte ho?
18: Aji nahi, AG sunte hain.
17: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Funasia Radio.
19: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
9: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
20: Hi USA, this is Imran Hashmi.
21: Hi, this is Isha Patni.
20: You're tuned into 104.9 FM Funasia Radio.
21: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
20: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Awarappan 2 in cinemas from 14th August.

जमाना बड़ा खराब है भैया, बहुत खराब जमाना है। आजकल लोग बड़े मतलब के हो गए हैं, और मतलब तुम लोग कितना भी फेवर कर लो, कितनी भी अच्छाई अपनी तरफ से कर लो, पब्लिक को वो सच्चाई और अच्छाई दिखती नहीं यार। अब जैसे आजकल के जमाने में ना, तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लो ना, फिर भी बोलेंगे ठीक से नहीं कटवाई यार, थोड़ी ऊपर से कटवानी चाहिए थी। सेटिस्फैक्शन ऑफ द टुडेज पीपल इज द वेरी टफ चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड टुडे, बट कोई बात नहीं, हम आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेंगे जी, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू हियर एट फन एशिया रेडियो। इट्स 5:26 इन द स्टूडियो क्लॉक। टुडे इज थर्सडे इवनिंग, अगस्त की 13 तारीख हो चुकी है जी, एंड 13 तारीख को कुछ कुछ बर्थडेज वी आर गोना सेलिब्रेट जस्ट इन अ बिट हियर ऑन फन एशिया। इन द मीन टाइम आई हैव अ ग्रेट ट्रैक लाइंड अप फॉर यू, और साथ साथ ये बता दूं कि दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय तनिष्क ज्वेलर्स राइट हियर इन DFW सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ डायमंड। एंड इस फेस्टिवल में तो भैया जो डील है वो जबरदस्त है, 25% ऑफ डायमंड वैल्यू एंड डायमंड मेकिंग चार्जेस, यानी कि ज्वेलरी मेकिंग पे भी 25% ऑफ मिलेगा आपको इफ यू बाइंग डायमंड ज्वेलरी, एंड 25% ऑन डायमंड वैल्यू। तनिष्क ज्वेलर्स इज द प्लेस राइट हियर इन फ्रिस्को, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे आर एक्सेप्टिंग योर ओल्ड गोल्ड। जी हाँ, अपना पुराना गोल्ड ले जाइए, एनीथिंग दैट इज ओवर 18 कैरेट यू विल गेट zero deduction on gold value. I think it's a great steal. Get with Tanishq for the best girlfriends. Wo kehte hain na, the diamonds are a best girl's best friend. So get your life partner, another best friend in the form of a diamond from Tanishq.

0: Beautiful track. ये भी एक फिल्म ऐसी थी यार जो बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनी. That was Fukre and Fukre had you know the Chucha as an actor and then the other two people and wonderful acting. इसमें देखने को मिली थी हमें. And right now it is the time to connect you to somebody who will help you when it comes to fulfilling your dream. देखो हम सबका सपना है कि हमारा जो business है Dallas Fort Worth में वो boom करे, Dallas Fort Worth से और आगे जाए and we do well in our businesses. And at times when we are growing, we would appreciate किसी को भी अगर हेल्प मिल जाए ग्रो करने के लिए. द राइट पार्टनर इज ऑल दैट यू नीड व्हेन यू लुकिंग टू ग्रो योर बिजनेस. फॉर्चुनेटली डालस फोर्ट वर्थ इज फुल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हियर इन आवर कम्युनिटी इन DFW एंड उसके लिए एक सॉल्यूशन लेके आते हैं द SBA लोन एक्सपर्ट्स मिस्टर शाहिद पंजवानी हु इज गोना बी जॉइनिंग अस राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो एंड आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर हिम व्हिच माइट हेल्प आवर कम्युनिटी हियर. गुड इवनिंग शाहिद भाई, हाउ आर यू?
1: I'm doing great. Good evening to you and all listeners.
0: Shahid sahab, ye bataiye ki you know do part hai mere questions ke. Pehla part to ye hai ki when somebody is starting a business, advisable kya hai? Ek bilkul scratch se naya business banana ke ek franchise lena. Number two, kuch loan programs jo aaye hain SBA ke, I've heard there are something new things happening in SBA. Can you explain both those questions to me, please?
1: Yes. So advisable wise, I cannot advise on the क्या शुरू करा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि लोन या फाइनेंसिंग हासिल करना किस प्रोसेस में ज्यादा इजी है. अगर आप कोई बिजनेस स्क्रैच से शुरू कर रहे हो या आप कोई फ्रेंचाइज स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, कंपेयर टू व्हेन यू आर बाइंग अ समबडीज एग्जिस्टिंगली ऑपरेटिंग बिजनेस व्हिच हैज एन हिस्टोरिक रेवेन्यू, देन टू गेट अ लोन टू बाय दैट एग्जिस्टिंग बिजनेस इज मोर इजियर. अगर आप चलती हुई दुकान खरीद रहे हो, चलता हुआ फ्रेंचाइज खरीद रहे हो, कोई भी आईटी कंपनी है या व्हाटएवर योर बिजनेस दैट यू आर प्लानिंग टू बाय दैट हैज अ टू और थ्री और फोर ईयर हिस्टोरिक रेवेन्यू, देन वी कैन हेल्प यू गेट द लोन एंड इट हैज ग्राउंड्स. इवन दो द रेवेन्यू माइट बी नॉट इन गुड शेप एंड यू हैव अ बिजनेस प्लान कि पहले ये बिजनेस ऐसा कर रहा था और फॉर सो एंड सो रीजन इट डिक्लाइन एंड वी कैन टेक ओवर एंड टर्न इट अराउंड, देन इट मेक्स द केस स्ट्रॉन्गर. Comparatively, if you are like leasing a place or starting something from scratch, then a lot depends on the business plan and a lot depends on the startup karne wala jo banda hai, uska kya experience hai us field mein aur unke paas kya income hai existingly dusre sources se, dusre job se, dusre business se, jo wo is naye startup ko loan ko support karte. Simply, lender ko ek hi cheez chahiye, chahe aap ghar kharid rahe ho, chahe aap business kharid rahe ho, chahe aap car kharid rahe ho. वो बोलते हैं कि आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए इस लोन को पे ऑफ करने की. शो मी द मनी एज दे से. हाउ विल यू मेक द लोन पेमेंट इफ यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस और इफ यू आर बाइंग अ न्यू बिजनेस? सो एवरीथिंग स्टॉप्स एट द कैश फ्लो ऑफ ईदर योर कैश फ्लो और ईदर द बिजनेस यू आर बाइंग.
0: All right, that is Shahid Panjwani Saab with One World Business Capital. If you're looking for a loan, get with him. Give them a call. 817-786-3338 is the phone number. That's 817-786-3338. Shahid Bhai, always a pleasure talking to you. Anything else that you'd like to add before I let you go?
1: Yeah, I would like to add one important point. We specialize in SBA loans. A lot of people, a lot of times they think that only thing we can help you with is SBA loan. That's not the case. We do not work as one-size-fits-all approach. SBA, most people like it due to the low down payment. Aapka total project agar $1 million hai, aapko sirf 10% down dena hai, $100,000 down. Rest of the money can be loaned. On top of that, you can also get additional working capital of another 50K, 200K. Toh fir aapki down payment aapko wapis mil jati hai. We can help you with conventional loans, non-SBA, jisme thodi si zyada down chahiye. We can help you cash out on equity within your home or with your commercial property. We can help you with line of credit. So it's not a one-size-fits-all approach. Agar aap market mein ho, business kharid rahe ho, ya existing business owner ho, I always encourage callers, one way or the other, we will find a way to get the money you want.
0: That is Shahid Panjwani with One World Business Capital. 817-786-3338. SBA loan experts. Get with them whenever you have your loan need.

0: Morning, Roy, and that with Neha Kakkar's voice. And don't forget, this very Saturday, IANT's 49th Anand Bazaar celebration, which is the India's Independence Day. This is at the Comerica Center in Frisco. Free entry for all of you. Of course, bahut sara khana peena. Hum desi khane ke peene ke bina nahi hote ji. Live concert and a lot of entertainment. Entry is free for all.
1: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
2: Kaun sa?
1: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
2: अरे सारे तो सेम है
1: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये ये ये देखो ये वाला
2: ओ हाँ ये तो अलग है
3: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
5: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो हर कदम आपके साथ
3: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस
8: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
2: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
8: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
2: ये क्या होता है
8: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन Available.
9: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
10: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
3: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiser Way location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco. Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment, or investment visa, firm labor certification or citizenships. They do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: सूरज की बाहों में है तो सूरज की बाहों में ही रह जाएगी, कोई रवि की बाहों में मतलब उसका सेटिंग करो ना, शादी वादी करवाओ यार, एक ही जगह सेट हो बंदे। और शादी होने के बाद सबसे जरूरी पता क्या होता है, बीवी को खुश रखना। बीवी पता कब नाराज होती है, जब आपका क्रेडिट कार्ड का डेट जो है वो आपके ऊपर चढ़ जाए, आपकी क्रेडिट स्कोर की धज्जियाँ उड़ जाएँ, बस तब आप समझ लो कि आपकी रिलेशनशिप की भी धज्जियाँ उड़ने ही वाली हैं। क्योंकि दिस इज समथिंग एज अ नीड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्रेडिट स्कोर इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू सस्टेन एंड हैव अ गुड स्टैंडिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत ज़रूरी काम है, घर नहीं मिलता भाई, गाड़ी नहीं मिलती भाई, जो भी मिलता है ऐसे ऐसे क्रेजी इंटरेस्ट रेट में मिलता है कि यू वंडर कि मैंने इतना बड़ा ब्लंडर कर कैसे लिया। बट इंसान है भाई, गलती होती है, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू मेक अ मिस्टेक और दे डू मेक मिस्टेक्स अननोइंगली, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ मिस्टेक। अब अगर गलती हो गई है उसको सुधारने के लिए एक भाई साहब हैं, उनका नाम है जी अमन, ही इज़ विद उरा डेट एंड दे मेक श्योर कि आपका डेट खत्म करें, आपके क्रेडिट स्कोर को ऊपर लाएं। एंड हाउ दे डू दैट, वेल आई लेट हिम टेल यू। गुड इवनिंग अमन, वेलकम टू फाइनेंशियल।
1: जी हाँ, फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार। सो दोस्तों, महीने की शुरुआत होती है और आप ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मंथ में पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों ने वो गलती नहीं की और उन्होंने हमें कॉल किया, डेट सेटलमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ाया और अपना कर्ज स्टार्ट कर दिया उतारना। तो अगर आप भी वो गलती कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देते जा रहे हैं और वो उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, आपका आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा कौन सा? आपकी क्रेडिट कार्ड का। अगर क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भरते भरते परेशान हो चुके हैं तो फिर देर किस बात की, कॉल कीजिए उरा को। और क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर्सनल कोई भी क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, उसका आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा। और न सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स अगर आपने ले रखे हैं, पर्सनल लोन का मतलब अनसिक्योर्ड डेट, या फिर गाड़ी जो रीपोजेस हो गई है या टोटल हो गई है वो भी अनसिक्योर कैटेगरी में फॉल करता है, उसको भी नेगोशिएट करके आधा माफ करवाया जा सकता है। अगर बहुत सारे ड्राइवर भाइयों के जो है ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो गए, उनके ट्रक जो रीपोजेस हो गए हैं उसके कारण भी अब उनकी पेमेंट देना मुश्किल हो गया, तो वो हमसे रापता कर सकते हैं। अगर रिपो ट्रक है या गाड़ी है उसको नेगोशिएट करके आधा माफ करवाया जा सकता है। सिंपल कॉल कीजिए उरा को, हिंदी पंजाबी उर्दू अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, वी कैन टॉक। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं यानी कि अमन अपने दोस्त से 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555। वेबसाइट है www.ura.org। तो फिर मिनिमम पेमेंट से पहले कॉल जरूर कीजिएगा।

पर आप लोग ग्रैंड प्रेरी में रहते हैं तो गम में मत डूबिए, आर्लिंगटन में रहते हैं तो सैड मत होइए. इफ यू लिव इन मैन्सफील्ड डोंट वरी मैन, आई हैव गॉट यू अ ग्रोसरी स्टोर राइट देयर इन योर नेबरहुड नाउ, राइट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 360. देयर इज अ ग्रोसरी स्टोर कॉल्ड हिमालयन बाजार व्हिच इज सर्विंग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ऑल ऑफ अस बेसिकली. यार सारी ग्रोसरीज वहाँ आपके लिए अवेलेबल है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दाल, चावल, कांदा शांदा, सब कुछ, मतलब सब्जियां, ताजा फल, योर ग्रोसरी आइटम्स, मीट शॉप व्हिच हैज हलाल मीट फॉर यू, चिकन, बीफ, chicken, goat, and water buff for all of my Nepalese friends. So chicken and mutton is what they keep along with water buff, which is the bison here, that's what we call them. But उसके साथ साथ if you are in a 5 mile radius from their location, so पहले अपने आपको एक फेवर कीजिए, Google Himalayan Bazaar, see if you're in a 5 mile radius. If you are, you get free delivery on any orders which are $50 or more. Every dollar you spend is a point. And for every point, when you get 200 points, yani ke $100 kharchne pe 5% off milega. In the evenings, they bring you tea, coffee, chai, pakode and samosa right there made fresh. So, momos bhi hain bhai. Go check them out. Get your grocery needs done. And this is in the heart of Arlington, right there in the middle of Grand Prairie, Arlington and Mansfield. Make sure to check it out. Kisi ne pucha mujhse, actually, girlfriend ne pucha. Us time pe jo girlfriend thi. शादी हो गई ना अभी, तो उसने पूछा, सुनो यार एक बात बताओ, दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? मैंने कहा जो चुपचाप घूरता रहता है और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ भी जाता है. पर बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा शेर, यार शेर की बात कर रहा हूँ.

0: शूट लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
1: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
0: कैसे?
1: पेज 3 ईटरी?
0: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
1: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
0: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
2: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
0: कहाँ?
1: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% and discount.
0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक।
5: सो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाल कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के।

0: बड़ी मस्ती करता है तू, मेरी शोना शोना शोना शोना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
1: डेब्यू हुआ था जी इनका इन द ईयर 1967 विद अ तमिल फिल्म जिसका नाम था कन्नधन कनुराय एट द एज ऑफ आई थिंक इट वाज जस्ट 4 एंड बिगन प्लेइंग लीड रोल्स एज अ चाइल्ड इन अदर मूवीज। 1969 की फिल्म आई थी थुनाइवन एंड देन ऑफ कोर्स वी नो द स्टोरी वेंट ऑल द वे टू बॉलीवुड विद मेनी हिट्स मेनी मोमेंट्स ऑफ जॉय फॉर ऑल द व्यूअर्स दैट शी एवर हैड इन फ्रंट ऑफ हर। विद दैट वी विश Shridevi a very happy birthday from the team here at Fun Asia and from Banda Bindas. Ek chote se break ke baad we are coming back. Don't go kahin nahi.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. La!

मेरे ना एक चाचा जी ना डॉक्टर है, डॉक्टर, और हमारी चाची है ना चाची, वो मिसेस डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की बीवी है। तो मैं एक दिन घर मिलने गया हुआ था चाचा चाची को, तो चाचू ने उसी दिन चाची का टेस्ट किया था शुगर का। तो चाचू कहते हैं चाची को कि वैसे कमाल है ना, सेल्फ कंट्रोल का जो तुम्हारे पास जादू है ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा। चाची कहती क्यों, ऐसा क्या हो गया? कहता नहीं, बॉडी में इतनी शुगर है, मजा आ कि तू मुंह पे आने दे।

चेहरे पे मुस्कुराहट और चेहरे पे मिठास रखिए यार, शुगर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है दोस्त, दिल में होनी चाहिए क्या कहते हैं ना प्यार की भावना, और भावनाओं को समझ, मतलब मैं क्यों भावनाओं को क्यों समझो यार, मेरे पास एक ज्योति है मैं उसी को समझ लूंगा खुश हो जाऊंगा। Congratulating Mr. RK on winning that giveaway. That was from D-Vibe Restaurant in Aubrey, part of the Foodistan team there. And ye jo giveaways hain ji hamare station pe chalte rehte hain. If you've not gotten a chance to win sometime, don't worry. Aayega mauka. Har bande ka mauka aata hai bhaiya. वक्त हमारा भी आएगा, आपका भी आएगा, सबका आएगा। फिलहाल आपको ये बता दूं, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय द ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप या इमिग्रेशन से कोई भी कंसर्न हो, एक नाम हमारे पास है जो कि एक्सपर्ट है अपनी लाइन में, एंड दैट इज सीमा मेहता। द लॉ ऑफिसर सीमा मेहता डज नॉट ओनली डू ग्रीन कार्ड फाइलिंग और पर्म सर्टिफिकेशन, बट दे ऑल्सो हेल्प यू गेट टू द फास्टेस्ट राउट टू योर ग्रीन कार्ड और द ड्रीम ऑफ अ यूएस सिटीजनशिप, दैट इज थ्रू द EB-5 प्रोग्राम। इफ यू हैव क्वेश्चंस विद एनीथिंग, चाहे आपका आप कन्वर्जन करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम F1 टू NH1, यू आर लुकिंग टू गेट दैट पिटिशन डन, यू लुकिंग टू गेट योर ग्रीन कार्ड फाइलिंग डन, यू आर लुकिंग टू गेट योर पर्म एप्लीकेशंस डन, और इफ यू आर लुकिंग टू गेट योर सिबलिंग्स के लिए, अगर आपको अपना अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए ग्रीन कार्ड फाइल करना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फियांसे वीजा विच इज कॉल्ड द के कैटेगरी वीजा आई थिंक समथिंग लाइक दैट, दे ऑल्सो डू दैट। सो एनीथिंग इमिग्रेशन दे आर द एक्सपर्ट्स, सेंड देम एन ईमेल info@seemamehtalawfirm.com, info@seemamehtalawfirm.com, she'll answer all your questions and concerns. For now, let's take you to this next agla gana jo ki hai ji aap logon ke liye lined up. And you know what, is gaane ke saath ek baat hai, ek film aayi thi jiska naam tha janab, that was the movie Dabang. Ha, Dabang film mein na ek gaana aaya tha, Munni Badnaam Hui. Yaar waqt ka na waqi pata nahi chalta, matlab aapne socha tha ki Munni Badnaam Hui ko bhi 16 saal ho gaye hain bhaiya. It's been 16 years since Munni has been Badnaam.

देखो झंडू आम होता है पेन शेन के लिए ना, पर गले में खिच खिच के लिए होती है। विक्स विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। काश एक और गोली होती जिससे चिक चिक दूर हो जाती, बट अभी तक वो गोली बनी नहीं है। बट इट्स अ नाइस आइडिया फॉर यू गाइस एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं ना, डालस में आप एक गोली बनाओ जो आप बीवी को खिलाओ, जैसे गले में खिच खिच होती है ऐसे होता है ना, तो आप विक्स की गोली खाते हो। पर जब घर में किच किच होती है ना, तो आपको अपनी बीवी को खिलानी है एक गोली जिससे किच किच ठंडी हो जाए। नॉनदलेस दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज गोना गिव यू अ सोल्यूशन टू गेट योर नीज, योर बैक, ये जो शियाटिका का इशू कहते रहते हो ना, हाय मेरा हिप, मेरा लोअर हिप, हाय वही बड़ा दर्द करता है, मेरी बैक स्टिफ है, ओ आ, मतलब उठते झुकते बैठते आपको दर्द होती है, आपके गोडों में प्रॉब्लम आ रही है, गोडे घुटने, हमारे पंजाब में गोडे कहते हैं जी, घुटने यानी कि नीज, और ये आपके जॉइंट्स में अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग दैट पेन किलर ऑफ द काउंटर, प्लीज़ एक बारी टेक्सास स्टार रिहैब के पास जाइए, मेरी रिकमेंडेशन पे जाइए। यू विल थैंक मी, यू विल थैंक द प्रैक्टिशनर रूशी, उनका नाम है, ही हैज टू प्रैक्टिसेस, वन इज इन अर्विंग राइट ऑन बेल्ट लाइन 635, द अदर वन इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी विच इज राइट हियर इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को, एंड ही इज हिमसेल्फ अ physiotherapist who has cured many players and done many procedures for many sports personalities, including the master blaster Sachin Tendulkar, Sehwag, even Shoaib Akhtar, and then all of the MLC cricketers. He's also the physiotherapist for Mumbai Indians, New York cricket team that plays the MLC Cup here. And in the Frisco location, you have a ton of other services that you can make use of. Jaise ki unka jo state-of-the-art therapy hai, usme aapko milti hai orthopedic sports injuries, pelvic therapy, massage therapy, uske alawa red light therapy, functional nutrition and sports medication. Now the best part is that he gives personal attention to you and makes sure ki aapko relief mile, and he has done a lot of work on me myself after my hip replacement, and I would recommend that if you ever go through a surgery ya koi bhi aapki body mein ailment hai which you think is not curable, Rushi has a solution for it with the right nutrition and with the right exercises. Things can change for you quite a bit. Ek gana aur lagate hain ji, iske baad lete hain chota sa commercial break, but remember the website for Texas Star Rehab, that is texasstarrehab.com. Ek gana jo ki bahut pasand kiya jata hai ji, and it has been requested for this show as well. This is an epic movie jo hum kabhi nahi bhul sakte. It was called Mohra, 1994, and this track just gives us joy anytime we hear it. Here we go.

0: Indeed, cheese badi hai mast mast. This song was mast mast. Raveena Tandon ka dance was zabardast, and Akshay Kumar, of course, acting and the dancing was us time pe was the happening thing, man. This movie was the happening thing. This song was the happening thing. 1994 was the year. What will Karnataka have for smokers or pan masala eaters in the future? I think it's not looking good. Kya hai details batata hun, but a state in India is planning to ban cigarettes, pan masala all together, even gutka. Consumption, sale, storage, sab band hone wala hai. And I think that one start might be a start to something really big and really important. We'll come back and talk about this right after these short messages.
1: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है, और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
3: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशन एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.sanadainc.com today.
11: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights be.
2: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
14: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: Hi, USA. This is Imran Hashmi.
20: Hi, this is Isha Patni.
19: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio.
20: One of Bollywood's most loved cult classics returns.
19: I'm back as Shivam Pandit, and this time the emotions are deeper. The music is set to touch every heart once again. And the legacy continues. Witness Avarapan 2 in cinemas from 14th August.

0: बेगम बगैर बादशाह किस काम का, बादशाह बगैर बेगम किस काम की। पर अभी जो बात हो रही है जी, बादशाह बेगम को छोड़ो, ये जो भाई बहन, भाई भाई का रिश्ता है ना, बहन बहन का रिश्ता है, ये भी एक जबरदस्त रिश्ता है यार। मतलब बचपन में लड़ना भी खूब, एक दूसरे के लिए गालियां खानी भी, एक दूसरे के मार पड़वानी भी और एक दूसरे के लिए मार खानी भी, ये सब मसाले हैं ना जो ये भाई बहन के रिश्ते में मिलते हैं यार। आपसे पूछ रहे हैं आपकी स्टोरी, लेट्स सी हु डू वी हैव हियर ऑन फनेजिया, हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट। गुड इवनिंग टू यू फनेजिया, आपका नाम?
1: Hi, my name is Anurag.
0: Anurag ji, kaise hain? Quickly, any memory of you and your sibling that you want to share?
1: Yeah, of course. So, meri jaise sister hai, mere se 3 saal choti hai. So, humne summer vacation mein kai baar bahut masti karne ka rehta tha, ek dusre ko pareshan karte karne ke mood mein. Ek hum oranges ke peel se hum khelte the, to orange ke peel ko aap agar push karoge towards the other side,
0: हाँ भाई, पिचकारी निकलती है आंखों में, रगड़ दो तो आइया करके आवाज निकलती है।
1: यस यस, तो वही एक्चुअली मैंने मेरी सिस्टर के साथ किया था और वो फर्स्ट टाइम था उसके साथ में, उसके बाद में आज तक हमने भी साथ में ऑरेंज नहीं खाया।
0: अच्छा, आज मैं साथ में कभी ऑरेंज ही नहीं खाया, तो अभी एक बार क्या, अगली बार क्या करना, जब भी आप अपनी सिस्टर से मिलो एक ऑरेंज अपने पास रखना, और जब वो कहीं बैठी आराम से चाय की चुस्की ले रही हो या किसी से बड़े गंभीरता से बात कर रही हो तो पास भाग के जाना, एक बार फिर से स्क्वीज करके दौड़ लेना, बस वो यादें ताज़ा करने का बहुत मजा आएगा। आई थिंक यू एंड योर सिस्टर विल हैव अ वेरी ग्रेट टाइम। आई लाइक दैट अनुराग, प्लीज होल्ड द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हियर वी गो, आई एम गोना गो to the next caller here, and you know what, pehle to main inka naam puchna chahta hu kyunki mera ek doubt clear hone wala hai aaj. Good evening Fanesia, please tell me your name. Are idhar hai aap? Haan ji Fanesia, sorry sir. Good evening, please tell me your name and the listeners listening to Fanesia. Sir ji, apna naam to bataiye, kahan chale gaye kathor, mere ko aap aise na kare mere sath. Can you hear me, Mr. Tamiz?
2: Hello, yes,
0: Mr. Tamiz hai, Miss Tamiz hai?
2: Miss
0: Tamiz. So actual, ladies and gentlemen, I want her to tell you the her full name. Can you please tell me your full name for the listeners, ma'am?
2: Yes, yes. When we were teenagers, myself and my sister.
0: नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है, पहले अपना complete name बताइए मुझे. What's your full name?
3: तबस्सुम मीर.
0: तबस्सुम मीर, क्योंकि यहाँ पे ना तमीज मीर आ रहा है मेरे caller
3: ID.
0: तमीज is your husband's name, right?
3: Yes, yes.
0: और मैम, मैं तो आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, डालस फोर्ट वर्थ, आप खुद देख लो कि मार्विन लाइव मिसेस तमीज से बात कर रहा है, इनके हस्बैंड का नाम तमीज है और आज मैं मिसेस तमीज से बात कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक पहुँच गया, धीरे धीरे तमीज से बात भी कर लूंगा, क्योंकि कई लोग कहते थे मार्विन तमीज से बात किया करो, तमीज से बात किया करो, नंबर नहीं मिल रहा था आपका। अब बताइए मैम, आपकी और आपकी बहन की कहानी।
3: जी, मैं और मेरी बहन जो है, and we had like very tough time with you know that ye bhai behne hoti hain to zahir hai, fir maine ek apna ek naya outfit silwaya to wo maine pehna aur bichari ne mujhe pucha ki tum mujhe yakin de sakti ho ye, maine kaha no way, nahi dungi main ye, to maine diya nahi aur bichari ne uska school ka kuch tha function usme kya kiya ki दूसरा पहनी चला, दूसरा जोड़ा पहनी चली गई वो, फिर मुझे इतना फील आज तक है वो, लेकिन वो मेरी बहन नहीं रही।
0: ओहो, शी पास्ड अवे, नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, हम उनको दुआओं में और यादों में याद रखेंगे। आपकी कॉल का करता हूँ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आई एम गोना टेक वन मोर कॉलर हियर। गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस? हेलो,
4: हाय, माय नेम इज शेल्जा।
0: हाय शेल्जा, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड एंड I would like to tell you one story. मैं, मेरी सिस्टर और मेरा वन ब्रदर है, बट हमारे कुछ कजिन्स भी, हम लोग साथ जॉइंट फैमिली थी, साथ में ही रहते थे। एंड नाइट टाइम में मोस्टली हैपन कि बिकॉज इंडिया में सिस्टम है कि बर्तन गंदे होते हैं यार, राइट, यूटेंसिल्स गंदे होते हैं, मॉर्निंग में मेड आके धोती है। तो नाइट टाइम 1 or 2 AM के अराउंड हम लोग ढूंढते थे कुछ, एंड हमने कई बार कुकर में मैगी बनाई है।
0: ओए शाबाश, कुकर में मैगी बनाई है लेट नाइट को स्पेशली।
4: उसके बाद वी वर 14 कजन्स एंड सब मिला के 14 किड्स वर देयर, एंड उसमें मैगी डिवाइड होती थी, एंड वी वर डिवाइड लाइक एक एक नूडल काउंट करके डिवाइड।
0: वाओ वाओ, गुड टाइम्स, गुड टाइम्स, गुड मेमोरीज। आई विल कीप यू ऑन होल्ड and I'll take your information off the air and get you in that contest. I have track, I have one more song that I can play for you, But uske baad main le raha hu ji aapse ijazat. This is Marvin Das signing off from your evening drive time show for today. But with a promise that actually tomorrow I'm going to do a cameo. I'm covering in for Navneeta. So 5 to 7 you will see me again tomorrow. And after that on Monday with the blessings of the Almighty. If I live tomorrow, I'll see you tomorrow as well. And aap logon ke liye bhi dua karta hu yaar. Jahan bhi rahein, khush rahein. The most important person in your life is nobody else but you. Because if you're happy, you're joyful, everything around you just comes into place. Adios.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डेलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में? सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
7: Ocho.
8: Hoko.
7: Ocho.
8: Hoko.
7: Ocho.
8: It's Hoko. अरे बस भी करो यार.
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
8: नाम Hoko हो या Ocho क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
6: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स.